FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का ये प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान

0: ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने पीएसए चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा पीएसए टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। दिन की बेहतरीन शुरुआत करने से पहले आइए साथियों वंदन अभिनंदन करें उस माटी का जिसका कण कण है पावन। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए देश वंदना।
3: जयशंकर प्रसाद ने कहा है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आज भी हम सबको सिर्फ आगे बढ़ना है, अपना भाग्य गढ़ना है और विकास का रास्ता चुनना है।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना। लीजिए प्रस्तुत है जगजीत सिंह के स्वर में सूरदास के पद्य।

श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत लीजिए पेश है हरिओम शरण की आवाज में।

0: भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत लीजिए, पेश है सोहन सिंह राठी की आवाज में ये शब्द।
1: गुरुवाणी गाओ भाई

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अभी आपने सुनी सोहन सिंह राठी की आवाज में ये शब्द। और इस अंतिम गीत के साथ ही आराधना कार्यक्रम का आज का ये अंक यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम खेती की बात के अंतर्गत गेंदा फूल की उन्नत खेती के विषय में जानकारी। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का है, लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार भाई। फूल के खेती की बात करें तो फूल के सीजन तो हर सीजन आजकल रही थे। हर फंक्शन में आजकल फूल के मांग ज़्यादा रही थे, चाहे तो पूजा पाठ हो, चाहे कुछ अन्य कार्यक्रम हो। अब बर बिहाव के सीजन लठियात है, तो अभी के समय अगर हम गोंदा के खेती करें तो अवैया समय में दशहरा दिवाली, दशहरा में तो नहीं भाई, दिवाली के समय अगर अवैया जन सीजन है उसमें बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। तो आज बात करबो गोंदा के खेती के। तो सबले पहले हम खेत के चुनाव की बात करी। बोले दोमट माटी जेमा जल निकास के बढ़िया

0: व्यवस्था हो, फसल भर उत्तम होते। उन्नत किस्म की बात करिए, अफ्रीकन, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, अर्का अग्नि, अर्का बंजारा, अर्का बंगारा, पंजाब गेंदा एक, कलकतिया गेंदा फ्रेंच, छत्तीसगढ़ गेंदा एक, पूसा दीप, चंदैनी, पूसा अर्पिता, अर्का भानु, अर्का शुभ्रा, अर्का विभा। आनी बानी की किस्म है और छत्तीसगढ़ के भी हमार गेंदा एक जैन किस्म है, वो बढ़िया गेंदा किस्म है। खेत की बात हम करें हन, बुआई रोपाई के उचित समय की बात करिए, जून जुलाई से अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर और आगू के समय में ठंड में जनवरी फरवरी में भी कर सकत हन। अब बात करबो बीजा के मात्रा के, 1.5 से 2 किलो बीजा प्रति हेक्टेयर की दर से लगा सकत हन। गोंदाला कटिंग से भी लगाया जा सकत है। बीजोपचार से पहले हमेशा कही थन के बीज ला उपचार करना है। 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से डाइथेन M45 नामक फफूंद नाशक दवाई से बीज उपचार कर सकत हन। अब हमन पंक्ति से पंक्ति और पौधा के दूरी के बात करबो। अफ्रीकन टाइप के गोंदा लगात हन तो 45 से 60 सेंटीमीटर के पंक्ति से पंक्ति दूरी रही है और फ्रेंच गोंदा के 30 सेंटीमीटर दूरी रही है। अब पौधा से पौधा की दूरी अफ्रीकन में 30 से 45 सेंटीमीटर, फ्रेंच में ये भी 30 सेंटीमीटर की दूरी रही है। कंपोस्ट अगर डालत हन तो बढ़िया खेत ला देख के अपन जरूरत के अनुसार, खेत के जरूरत के अनुसार हम सरे हुए गोबर के खातु डाल सकत हन, मिझार सकत हन। उर्वरक की बात करी प्रति किलो प्रति हेक्टेयर नत्रजन 120 से 50, स्फुर 80 से 100 किलो और पोटास 60 से 80 के मात्रा के हिसाब से उर्वरक के पूर्ति हमन ला खेत में करना है गेंदा के खेती में। निंदाई गुराई के बात करिए, फसल में रोपाई के बाद गेंदा के फसल में शुरू से 30 से 45 दिन फसल के बढ़वार के दृष्टि ले ज़्यादा महत्वपूर्ण होते। यही अवधि में खरपतवार मन की वृद्धि तेजी से होते। 25 से 30 दिन बाद पिचिंग घलो कर देना चाहिए। फसल छोटे अवस्था में होए में पानी दिए के बाद जैसे बता रहा थे तो गुड़ाई करना जरूरी होते। एक बार शुरू के 45 दिन में 2 पैत गुड़ाई जरूर करना है, एक बाद गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़े। सिंचाई हमन ला गोंदा के खेती में 7 से 9 सिंचाई के जरूरत पड़ते। खैर अभी तो बरसाती महीना है और जेकर मन सो भाई सिंचाई के साधन है तेने मन ये जिनिस की खेती कर सकते हैं। और आगु उपज के बात करें क्विंटल में प्रति हेक्टेयर तो अफ्रीकन गोंदा के जिन किस्म है वो आप मन ला 120 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे। अब फ्रेंच किस्म के जिन गोंदा होते तो उन्हें 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आप मन ला दे। तो संगवारी हो किसान भाई हो, ये रही से गोंदा फसल के, गोंदा फूल के उन्नत खेती और ओखर लाभ। राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गेंदा फूल की उन्नत खेती के विषय में जानकारी। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का था। साथियों, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आवाजें हैं भूपेंद्र सिंह और शोभना राव की। लीजिए सुनिए।

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहउ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन

दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

श्रोताओं भूपेंद्र सिंह और शोभना राव की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नौ विहान।

श्रोताओं, फ्लैगशिप पर आधारित नौविहान कार्यक्रम के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय है पीएम गतिशक्ति बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम गतिशक्ति बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय प्लान का उद्देश्य आखिर क्या है। श्रोताओं, इस प्लान के तहत परिवहन के समय को कम करना और लॉजिस्टिक लागत को घटाकर आर्थिक क्षेत्रों की दक्षता बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य माना जाता है। इस प्लान के अंतर्गत देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यानी बहुआयामी संपर्क और बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इतना ही नहीं साथियों, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा देश भर के विभिन्न मंत्रालयों और बुनियादी ढांचा परियोजना को GIS डिजिटल मानचित्र से जोड़ा जाता है ताकि इन सब का आपस में बेहतर से बेहतर समन्वय हो सके। इसके अलावा ये योजना मुख्य रूप से 7 आर्थिक चालकों जैसे रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक के विकास पर मुख्य रूप से आधारित होता है, जिसे ऊर्जा, आईटी, जल और सामाजिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थन भी मिलता है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान 2021 में शुरू की गई और अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की निवेश की पहल किए जाने की संभावना इस योजना के तहत बताई जाती है। एक डिजिटल आधार के रूप में ये मैक्रो स्तरीय योजना और माइक्रो स्तरीय क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करता है। ये योजना मौजूदा योजनाओं को जोड़ता हुआ आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर समझने और बूझने वाली बात ये है मित्रों कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं देश के बहुस्तरीय व्यापार को बढ़ावा देकर दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार के संबंध को कुशल मंगल बनाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। हमारे बहुत सारे युवा साथी कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी पहचान बना चुके हैं और इस तरह के मल्टीनेशनल्स कंपनी में वो व्यापार के नए संसाधनों के साथ देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो इस तरह की योजनाएं जब भी सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने देश के विभिन्न प्रांतों के साथ और बाहर के देशों के बहुत सारे आर्थिक और व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में इन योजनाओं को लागू करके बातचीत की एक जगह तैयार कर सकें और व्यापार को बहुआयामी स्तर तक बढ़ाकर देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचा सकें। तो लब्बो लुआब यही था मित्रों कि इस योजना से जुड़कर अनेक प्लेटफॉर्म और पोर्टलों से जुड़कर आप अगर व्यापार करना चाहते हैं, बहुस्तरीय व्यापार में आपकी रुचि है तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। आज की बातचीत यहीं तक। नमस्कार।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नवविहान। अब वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज सुबह प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:05 पर पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। 7:30 का समय होगा यादों के झरोखे कार्यक्रम का। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, प्रस्तुति मदन पांडे की होगी। और 8:30 पर आप अमराई कार्यक्रम में आज सुनेंगे मदन मेहर और मुंसेरी सिंह की आवाज में लोकगीत। 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का आप लेंगे आनंद। और ठीक 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण हम अपने ही केंद्र से करेंगे। ये तो थी श्रोताओं आज सुबह प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले मुख्य आकर्षणों के विषय में बतला दें। आज शाम 5:00 सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। आपको पता ही है ये कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम होता है जिसे हम प्रत्येक शाम अपने ही केंद्र से प्रसारित किया करते हैं। 5:05 का समय होगा चित्रपट संगीत का। संध्या 6:20 पर और 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुखदेव के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत। और 8:15 पर रजनीगंधा की खुशबू हम बिखेरेंगे। इसके अलावा मित्रों आज शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे साइबर जागृति अभियान पर केंद्रित चर्चा। इसके पश्चात क्रम कैरियर मार्गदर्शन का आप लेंगे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद। प्रस्तुति नेमी चंद्र साहू की होगी। आज संध्या 7:30 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और कृषि स्टार्टअप। आगे इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय होगा रेशम कीट पालन से लाभ। इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे जिला जांजगीर चांपा विकास खंड अकलतरा ग्राम कटहरी के सहायक संचालक रेशम जांजगीर के श्री अनिल कुमार कश्यप और श्रीमती सहोद्रा बाई। रिकॉर्डिंग एवं संपादन पंचू भैया का होगा और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए हम रुक करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जी

0: योरेव प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलियल दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमंत्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा नुवाकोट धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 88+8,000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27,200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर खेजर मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस

0: के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। ICC बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के इस वक्त 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, हंसती मुस्कुराती रचनात्मक स्त्रियों ने इस दुनिया को जैसे अपने हाथों में संभाल रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें पता चलता है कि कई ऐसी विदुषी स्त्रियां भी हुई हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन को संपूर्ण समग्रता के साथ जिया, बल्कि अपने स्वतंत्र विचारों को अपने व्यक्तित्व में उतारा भी, और साहस एवं निष्ठा, मेहनत और लगन से अपने भविष्य को संवार कर देश दुनिया के समक्ष ऐसे प्रतिमानों को भी स्थापित किया जिससे नई नस्लों के मार्ग की बाधाएं दूर हो सकें। 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रभावशाली साहित्यकार की ओर ध्यान बरबस ही चला जाता है जिन्होंने अपने समय की वर्जनाओं को तोड़कर अपने हिस्से की जमी और आसमा की तलाश पूरी की है, जिन्होंने अपनी डायरी के पन्ने पर लिखा कि मैं तुझे फिर मिलांगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां किस तरह पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलांगी, शायद तेरी तखियल की चिंगारी बनकर तेरे कैनवास पर उतरूंगी या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोशी से तुझे देखती रहूंगी या फिर सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे ही कैनवास से लिपट जाऊंगी, पता नहीं कहां किस तरह पर तुझे जरूर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलांगी। श्रोताओं, ये ख्याल, ये ख्वाहिश, ये जज्बात जज्म है पंजाबी और हिंदी साहित्य की मुखर एवं लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका, कवित्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम के स्वर में, जिनका वास्तविक नाम हुआ अमृत कौर। अमृत कौर का जन्म 31 अगस्त यानी आज ही के दिन 1919 को गुजारावाला, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां हुआ था। सूत्र बतलाते हैं कि भारत पाक विभाजन के समय अमृता प्रीतम लाहौर से दिल्ली आ गई और यहां आकर उन्होंने उन विषम परिस्थितियों को ताउम्र अपनी रचनाओं में उकेरा। विभाजन के दर्द को उन्होंने जिस शिद्दत से अपनी पुस्तक पिंजर में बयान किया है वो बिना पढ़े महसूस नहीं किया जा सकता। पिंजर उपन्यास पर आधारित फिल्म भी बनी है जिसे दर्शकों का बेहद प्रेम और सम्मान मिला। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा पर केंद्रित पुस्तक है जिसमें अमृता ने अपनी बेबाकी और सच्चाई को लफ्ज दर लफ्ज दर्ज किया है। अमृता की अनगिनत कृतियों में अच आँखा, वारिस शाहनू, जिसे भारत विभाजन पर लिखी ऐतिहासिक कविता का दर्जा हासिल है, उनकी इस कहन और बानगी को एक अनुपम कृति माना गया है। वैसे भी ये कृति साहित्य के आकाश का ध्रुव तारा माना जाता है। अमृता प्रीतम को वर्ष 1956 में उनकी लेखन प्रतिभा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमृता इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय महिला हुई। अमृता प्रीतम को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में कागज ते कैनवास जैसी रचनाओं के लिए प्रदान किया गया और लेखन के क्रम में ही उन्हें 1969 में पद्मश्री और 2004 में पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। अमृता प्रीतम की रचनाओं में स्त्रियों के जीवन के तमाम संघर्ष, प्रेम, एकाकीपन, दुर्बलता

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार।

और विषमताओं से उभरकर बेहद मजबूत व्यक्तित्व को प्राप्त करने वाली स्त्रियों का चित्रण देखने और पढ़ने को मिलता है। अमृता ने सदैव अपनी शर्तों पर जीवन को न केवल जिया है, बल्कि उन्होंने विरासत में प्राप्त अनुबंधों और तटबंधों को भी तोड़कर अपने जैसी पढ़ी लिखी स्त्रियों को खुला आकाश दिखाया है। अमृता प्रीतम की दास्तान में कई ऐसे मोड़ भी आते हैं मित्रों, जिनके बिना अमृता अधूरी सी लगने लगती हैं। अमृता ने लगभग 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में शुमार है जिनकी कृतियों का अनेक देशों की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। अमृता ने कहानियों, कविताओं, उपन्यासों के साथ साथ संस्मरण और आत्मकथा एवं डायरियां भी खूब लिखी हैं। अमृता ने आकाशवाणी दिल्ली में कई प्रस्तुतियां पेश की हैं। आज अमृता प्रीतम का जन्मदिन है। अमृता की लिखी नज़में वादियों में गूंजती रहेंगी सदा। अमृता प्रीतम की लिखी तमाम रचनाएं साहित्य की दुनिया में सदैव जिंदा रहेंगी और बहुत सारे पढ़ने लिखने वालों के लिए संबल का केंद्र बनेंगी, ऐसी हम आशा और दुआ करते हैं। और अब आइए सुनते हैं पिंजर फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित माना जाता है।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के पश्चात चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और इस वक्त हम आपको बतलाते चले कि 31 अगस्त के दिन को विश्व भर में वर्ल्ड डिस्टेंस लर्निंग डे के रूप में भी व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। आज का दिन शिक्षा की उस उच्च विधा को समर्पित है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी दूर रहकर अपने अध्ययन को पूरा करते हैं। श्रोताओं, बदलते समय और तकनीक की सुविधाओं ने शिक्षा के नए आयाम खोल दिए हैं। वर्तमान समय में किसी भी तरह की पढ़ाई या जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल संसाधनों ने छात्र छात्राओं को घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मोहलत भी दी है और अवसर भी प्रदान किए हैं। आज का सुंदर दिन उन लोगों की याद में समर्पित माना गया है जिन्हें आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक या भौगोलिक कारणों से नियमित कक्षाओं में शामिल होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड डिस्टेंस लर्निंग डे शिक्षा की पहुंच को सार्वभौमिक बनाने का

0: संदेश देती है। ये न केवल एक मुहिम है बल्कि एक ऐसा प्रयास भी है जिससे प्रेरित होकर न केवल विद्यार्थी बल्कि बड़ी उम्र के किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आश्वासन और लाभ दोनों ही प्राप्त कराया जा सकता है। वैसे भी शिक्षित व्यक्ति न केवल परिवार को बल्कि समूचे राष्ट्र को अपने निश्चयों से समृद्ध करने का मादा रखता है। तो श्रोताओं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का हम और आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी शिक्षा की मूल्यों को, शिक्षा के अपने और ज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं। कई बार हमें हमारी अभिरुचियों के अनुरूप भी कई तरह के क्लासेस ऑनलाइन देखने और सुनने को मिलते हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसे क्लासेस ज्वाइन करें और अपने ज्ञान के पिटारे में कुछ और मोती जड़ते चलें। इस वक्त सुनते हैं एक संदेश।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोताओं, संदेश को सुनने के पश्चात इस वक्त हो रहा है शहर के ट्रैफिक अपडेट को सुनने का।
2: सुप्रभात, मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप प्रतिदिन की तरह सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों, सभी चौक चौराहों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वाभाविक आवागमन बना हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार का यातायात अवरोध नहीं है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, जब भी जिस भी वाहन के साथ सड़क में हो, धीरे चलें, सुरक्षित चलें। मित्रों, सड़कों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में शासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस अपनी पूरी ऊर्जा के साथ समर्पित है, साथ ही अनेकों समूह, समुदाय, एनजीओ भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, किंतु विडंबना इस बात की है कि नित्य ही गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अकाल ही मारे जा रहे हैं। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के अनेकों कारण हैं। वाहनों का तेज गति में होना सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है। यातायात की सुगमता और वाहनों की गति में नियंत्रण के आशय से शहरों में रेड सिग्नल की व्यवस्था की गई है, किंतु तमाम लोग जल्दी के चक्कर में इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था रेड सिग्नल में भी उतनी ही तेजी के साथ वाहन भगा ले जाते हैं। किंतु यदि ग्रामीण सड़क में भी बिल्ली रास्ता काट दे तो वही लोग अधिक महत्व देकर अंधविश्वास में वाहन तत्काल रोक लेते हैं। शाम के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण शराब के नशे में वाहन चलाना पाया गया है, किंतु लोग नशा को न छोड़कर सड़क दुर्घटना से बचने अपने वाहन में नींबू मिर्ची बांधकर लटका रहे हैं या फटे पुराने जूते वाहन के सामने बांधकर लटकाकर पूरे विश्वास से चलते हैं जबकि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। मित्रों, वाहन मालवाहक हो या यात्री वाहक, सबकी अपनी परिवहन की क्षमता होती है और क्षमता से अधिक माल या सवारी भरी गई तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। फिर भी लोग इस गलती को भूलकर सड़क दुर्घटना से बचने के लिए पूरे विश्वास के साथ वाहन के पीछे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह आदि आदि लिखाकर चलते हैं। यह अंधविश्वास है, झूठी दिलासा है। साथियों, अंधविश्वास से बचें, यातायात नियमों का पालन करें।
0: बिलासपुर शहर के आवागमन का, माफ कीजिएगा श्रोताओं, बिलासपुर शहर के आवागमन का हाल अभी हमने ट्रैफिक अपडेट के माध्यम से सुना और जाना। श्रोताओं, हम प्रत्येक दिन की तमाम विशेषताओं, खासियतों और वर्तमान समसामयिक चर्चाओं के विषय में आपको अपडेट करने का इस कार्यक्रम में

0: भरपूर प्रयास करते हैं। इसी तारतम्य में हम आपको बतलाते चलें कि आज का दिन राष्ट्रीय चिड़ियाघर जागरूकता दिवस के रूप में उन बेजुबान पशु पक्षियों के नाम एक जागरूकता अभियान फैलाने का सुंदर दिन है, जिन्हें सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, चिड़ियाघर केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि ये शिक्षा, अनुसंधान और संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां दुर्लभ एवं विलुप्त होते ऐसे प्राणियों के प्रजातियों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है, जिससे जैव विविधता की रक्षा संभव हो सके। आज के दिन जानवरों की देखभाल, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और संरक्षण परियोजनाओं की जानकारी दी जाती है, ताकि हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति तनिक संवेदनशील बनकर समाज का निर्माण सुचारू ढंग से कर सकें। नेशनल जू अवेयरनेस डे हमें यही सीख देती है कि इस धरती पर प्रत्येक जीव का अपना एक अलग महत्व कायम है। उनकी सुरक्षा करना हमारी और आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि प्रकृति और प्राणियों के बीच का साइकिल सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चलता रहे।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोताओं, वैसे 31 अगस्त का दिन विश्व भर में अमेरिकी मूल के लोगों के योगदान, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत और अधिकारों का सम्मान करने का सुंदर दिन भी है। इतिहास खंगालने पर हमें पता चलता है कि एक समय में अफ्रीकी मूल के लोगों ने बहुत हद तक रंगभेद, नस्लभेद, गुलामी और सामाजिक अन्याय और कुरीति जैसी अनेक चुनौतियों का सामना किया। आज का मुख्य दिन और उद्देश्य ऐसा संदेश हमें देता है कि जातीय भेदभाव केवल समाज को कमजोर करने का नकारात्मक प्रयास है। अफ्रीकी मूल के लोगों ने कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद जैसे अनेक क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बनाई है। आज का दिन विविधता को स्वीकारने का एक बेहतर, न्यायपूर्ण और देश को सुंदर रूप से आगे बढ़ाने की हमें प्रेरणा देने का पवित्र दिन भी है। आज का दिन मानवता के साझा मूल्यों और आपसी सम्मान के प्रतीक का दिन भी है। तो हम सबकी कद्र करें, सबका सम्मान करें, सबको प्रेम करते चलें। और चलते चलते हम आपको बतलाते चलें कि आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनके राजनीतिक योगदान के लिए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही दुआ करते हैं कि आप सभी का दिन खुशहाल हो, सुंदर हो, मंगलमय हो। अब दीजिए विदा आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं, FM Band 103.2 MHz पर। सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम यादों के झरोखे से, कारवां पुराने यादगार गीतों का। जी हाँ, लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला मोती,

उसे चुनकर लाए हैं हम कुछ बेशकीमती मोती आप सभी श्रोता साथियों के नाम। पहला मोती हमने आपकी नज़र की लता मंगेशकर की आवाज़ में जागते रहो फिल्म से, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत। अब लीजिए पेश है मुकेश की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला तराना, बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म से। भरत व्यास के लिखे बोल हैं, धुन बनाई है सतीश भाटिया ने। लीजिए सुनिए।

0: लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: यादों की छरूखी सी, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में अनारकली फिल्म से। रजिंदर किशन की लिखी रचना और सी रामाचंद्रा का है संगीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS Care App। सोना खरीदने से पहले BIS Care App पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: श्रोताओं, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ की तरंगों के साथ हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ और इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं यादों के झरोखे से कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में ओपेरा हाउस फिल्म से। मजरू की रचना, चित्रगुप्त का संगीत है, लीजिए सुनिए।

0: लीजिए पेश है कार्यक्रम में शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को स्वर दिया है हेमंत कुमार ने। फिल्म का नाम है 20 साल बाद और धुन भी बनाई है हेमंत कुमार ने।
1: नजरों से कह दो जी

श्रोताओं, हेमंत कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे 20 साल बाद फिल्म का गीत। रचना शकील बदायूनी की थी और संगीत हेमंत कुमार का था। लीजिए पेश है यादों के झरोखे से कार्यक्रम का अगला यादगार तराना। लता मंगेशकर की आवाज़ में लव इन टोक्यो फिल्म से। हसरत जयपुरी की लिखी रचना है, शंकर जयकिशन का है संगीत। लीजिए सुनिए।

लव इन टोक्यो फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और जी हाँ साथियों, इस वक्त सायोनारा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में हम आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, इसी केंद्र में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ ही पलों में हम समाचारों के लिए रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डुमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर News on AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
5: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उड़ीसा में

0: आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
1: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
2: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम अमराई।

अमराई कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं मदन मेहर और मुंशेरी सिंह के साथ ही साथियों की आवाज़ों में गाए कुछ मीठे मीठे से लोकगीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत मदन मेहर की आवाज़ में।

श्रोताओं अमराई कार्यक्रम में पहला गीत ये था मदन मेयर और साथियों की आवाज़ों में एक भजन की प्रस्तुति। अब लीजिए पेश है इसी कार्यक्रम का अगला गीत, मदन मेयर और साथियों की आवाज़ों में ददरिया गीत।

श्रोताओं, अमराई कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मेयर और मुंशेरी सिंह के साथ ही उनके साथियों की आवाज़ में गाए हुए लोक रंग में डूबे हुए कुछ मीठे मीठे से लोकगीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मुंशेरी सिंह और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, सुरों की बारिश में भीगते इन मीठे मीठे से लोकगीतों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम अमराई के माध्यम से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मुंशेरी सिंह और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आमराई कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मेयर और मुंशेरी सिंह के साथ उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। लीजिए सुनिए इसी तारतम्य में अब मदन मेयर और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये थी अमराई कार्यक्रम की आज की अंतिम प्रस्तुति। हम आपको एक बार फिर से बतला दें कि अमराई कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमने आपको सुनवाया है मदन मेहर और मुंशेरी सिंह के साथ ही साथियों की आवाज़ों में गाए कुछ बेशकीमती लोकगीत। और इस कार्यक्रम से अब दीजिए आपकी अपनी अंतरा को विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के इस वक्त 9 बजे हैं। अब से लेकर 9:55 पर तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 9:55 पर हम प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। तो चलिए इस वक्त फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती से।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा था चित्रलोक, और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज है अमृता प्रीतम का जन्मदिन। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की महान कवित्री, लेखिका और उपन्यासकार थी, और आज ही उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम, विरह, स्त्री मन और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त किया, जो कि इनकी रचनाओं में दिखता भी है। उनकी प्रसिद्ध कविता अज आखा वारिस शाहनू विभाजन के दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति है। पिंजर उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे साहित्य की कालजयी कृतियों में गिना जाता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट ने साहित्य जगत में विशेष पहचान बनाई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। उनकी लेखनी में स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की

प्रकाश प्रमुख रही, अमृता प्रीतम आज भी अपनी संवेदनशील और बेबाक लेखनी के कारण साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं।

0: अभी आपने सुना स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी, शेखर रवि जियानी, उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार अन्विता दत्त, संगीतकार विशाल शेखर।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुआवजा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का गाना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर की, और संगीतकार अनु मलिक और मिथुन। कार्यक्रम चित्रलोक में समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर आप सभी का स्वागत है।

0: बिनी एंड फैमिली फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार एस संजय त्रिपाठी, संगीतकार ललित पंडित।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: झुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना योद्धा फिल्म का गाना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज, गीतकार कुणाल वर्मा, संगीतकार तनिष्क बागीची।

अभी आपने सुना 1.5 बीघा जमीन फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल की आवाज, गीतकार अर्को और संगीतकार अर्को। तो दोस्तों, समय चितलो कार्यक्रम का अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार, दीजिए कार्यक्रम से इजाजत और सुनते हैं अगली

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। थोड़ी ही देर में सुनिए आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

0: दुनिया के सामने चले जाइए।
1: के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहाँ उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।
2: देख के तेरी नजर बेकरार हो गई, जी हुजूर ठहरी, हम शिकार हो गए।

0: पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।
1: गरीब मान जरा मान।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा

शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के.एन. सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के.एन. सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के.एन. सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के.एन. सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

के एनसिंग को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदनलाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एनसिंग ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदनलाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एनसिंग को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदनलाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदनलाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भोलू का किरदार निभाया था।
1: कैसे?
2: क्या बोलो?
1: इतने सवेरे
2: कैसे आ गए?
1: चल मेरे साथ चल।
2: हाँ।
1: जल्दी चल।
2: लेकिन बात क्या है?
1: अरे वो तो सही।
2: अरे मुझे अपने पाँव से चलने दे, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी।
3: हाँ।
2: देख पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका। हाँ जल्दी जा जल्दी।

0: सुबह ये काम तो खत्म हो चला। तू जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो, ये लिप सूख जाए तो और लगा देना। मैं शाम को आऊंगा। जरा मेरा हाथ दबाइयो भाई।
1: मगर कहाँ जाओगे वैद्य जी इसे इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
2: शादी? वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी,
0: अरे कुछ कहेगा भी?
2: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी?
2: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो, क्यों बैठ जी?
0: अच्छा अच्छा, इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे, तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
3: बैठ जी, अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
2: बैठ जी, भगवान देखो जरूर है।
0: क्यों?
2: देख लो, दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए।
0: हाँ भाई, सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
3: बैची है तो बड़ी खूबसूरत, क्यों?
0: हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो गोकाक के परी को उठा लाए।
4: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुना सरदारा,

चिनप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरु दत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था, क्योंकि उनकी कोई

दान नहीं थी। उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के.एन. सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मों के जाने माने अभिनेता के एन सिंह पर।
1: श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में आज रोड शो आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। इस कार्यक्रम में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति, स्कॉलर और पास होने वाले छात्र शामिल होंगे। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए आज नवा रायपुर में रोड शो आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोयला तथा खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नीलामी की 8वीं किश्त में 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए हैं। इनमें ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वैनेडियम, टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल हैं। रोड शो में निवेश और नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। साथ ही टिन पोर्टल और ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में BSc कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसलिंग 31 अगस्त से 2 सितंबर तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण, महाविद्यालय आवंटन और ऑनलाइन फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय ने संबंधित दिशा निर्देश अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक आज रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और केंद्रीय राज्य

मंत्री सोखन साहू सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन जिलों में मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की है उनमें बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, जशपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले शामिल हैं। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित करने की आज अंतिम तिथि है। योजना के तहत नृत्य संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, गीत वादन, शिल्प, पारंपरिक पाक कला और सौंदर्य कला से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष 12,000 से 24,000 रूपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पात्र कलाकारों को चिन्हारी पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में आज रोड शो आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के इस वक्त 10 बजे हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। आज की प्रस्तुति है मदन पांडे की। लीजिए सुनिए।

0: झमाझम
1: राम
0: बरसे
1: राम।
0: पानी, गरी खोर धोआ गए, खेती खार हरियर हरियर, फसल ह लहलहा गे। और ऐसे मौसम म अपन संगी संगवारी मन सो गुठियाए बतराए बर हमर मन ह अकुला गे। आओ संगी शुरू करत हन उही मयारू कार्यक्रम ला, जेन ल कहते तुहर गोट हमर गीत। शुरू करत हन इही फोन कॉल ले। तुहर गोठ और हमर गीत कार्यक्रम के अंक मा अपन सुनैया संगवारी के हम स्वागत करत हन भाई। कहाँ ले बोला था आप मन भैया, कौन बोला था?
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ ले इंद्रभान सिंह बोला था। आपको निमित होता है इंद्रभान सिंह।
0: इंद्रभान सिंह जी कार्यक्रम में आप मन के गाड़ा गाड़ा स्वागत है, मीट स्वागत है भाई। और बताओ का हाल चाल है, पानी कान जी कत का गिरत है आप मन डहर?
1: हाँ दादा अभी ठीक हूँ, मतलब की यहाँ का हाल चाल तो वही, पानी खूब गिरी दादा।
0: हाँ
1: कभी कभी बीच बीच में उमस गर्मी करते हैं, पानी गिरते तो एकदम झाए झाए खूब कल खूब पानी गिरी से, आज भी खूब पानी गिरी।
0: हाँ,
1: और रात की भी गिरी से
0: अभी भी
1: गिरत है
0: वर्षा
1: तो,
0: के चेतावनी है
1: हाँ
0: कहना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफी बारिश के संभावना बताई गई है मौसम विभाग द्वारा।
1: हाँ दादा।
0: हाँ
1: और यही अभी पानी गिरे से की जन धन का काफी हानि हो थे नेपाल में, तो सुने हैं ना दादा कितना वो
0: हाँ
1: बहुत बड़ा नुकसान हुई से नेपाल में।
0: त्रास दिए हो। और वही है कुदरत जब कभी भी असंतुलित होते इंद्रभान सिंह जी, तो इस तरह के अनचाहे परिस्थिति उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े दुर्घटना मन के कारण बन जाते हैं। वहाँ तो प्रकृति से छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए मनुष्य ला,
1: जन धन के कितना हानि हुई,
0: होनी हुई
1: कितना जन
0: से।
1: बाढ़ गई किसी को पता ही नहीं चला।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब हम उनके सबके संवेदना उमन के साथ है भाई, कि कहे जा सकते हैं मनुष्य ने इस तरह के जो दुर्घटना होते हैं से सबक लेना चाहिए और प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंद्रभान सिंह
1: हाँ
0: जी
1: दादा,
0: अभी
1: और आने वाला जन्माष्टमी, तीजा, गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं, और पूजा बढ़िया से मनाए दादा।
0: हाँ
1: और ये
0: आप
1: मौसम में भी मतलब की तबीयत खराब हो तो बिल्कुल

0: हर काम छोड़ के तबीयत के प्रति विशेष ध्यान दे।
1: बिल्कुल, आप मन के सलाह बिल्कुल विचारणीय है और बहुत ही अच्छा उत्तम सलाह दे आपन। और आपसे बातचीत करके अच्छा लगी सिंदर भान भैया। एट हाउस सुमैया संगवारी लाइन में है, ओकरो से गुड बात कर ले।
0: हेलो, तुहर गोठ हमर गीत।
1: हाँ, तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम आए संगी, आप मन के स्वागत है। कहाँ ले बोला था आप मन, कौन बोला था?
0: मिथिलेश कुमार साहू, रानी राम नगरी जिला धमतरी बोला तू।
1: खिलेश भाई, कार्यक्रम में आप मन के हृदय से स्वागत है भाई, आत्मीय स्वागत है।
0: जी जी
1: और
0: जी धन्यवाद भैया।
1: काका बुता काम चले थे संगी?
0: अब सब काम तो हो गए खेती किसानी पे, और
1: हाँ
0: टाइम में प्रतिदिन विकास विभाग में गलत काम करते हैं, तो हमरो टीकाकरण के कार्य हो गए। अभी गर्भवती स्टैंडिंग टीका लगा रहे हैं
1: बढ़िया बढ़िया।
0: मुंशी मन ल वही है, वो कंप्लीट कर दा रहे हैं।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, इस तरह के जागरूकता
0: पानी
1: है।
0: आज के समाज हम गिरा से सूख गए ले, और रात से झलक गिरा से भूसुर भूसुर ऐसे भूर भूर भूसुर पानी असर।

0: लगात
1: बढ़िया बढ़िया।
0: मुंशी मन ल वो कंप्लीट कर दा रहे।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, इस तरह के जागरूकता
0: पानी
1: है।
0: आज समाज हम गिरा से सूख ले और रात से झलक की रहती है घुसुर घुसुर इसने भुरभुसी पानी असर
1: भुरभुसी पानी असर।
0: अभी
1: अभी तक चेतावनी
0: छठ गिरा थी।
1: अभी मौसम विभाग के चेतावनी है खिलेश भाई कि पानी काफी जोर से गिर सकत है। तो हम तो ये कहो कि पानी के ऐसे गिरे के स्थिति में ना खेत है और नदी है कई जगह ऐसे जो पानी है भरे रहते और बड़ा खतरा रहते है हमें लोग लेकर मतलब बिल्कुल भी तौरे पर नहीं जान देना चाहिए ऐसे जगह मन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कई बात ऐसे होती थी नदियां नगम पूरा आते नहीं तो बस्ती तो बस्ती पूरा देख चली जाती
1: है ना
0: तो
1: भाई।
0: वह में सावधानी बरतना चाहिए।
1: हाँ पानी के ऐसा जो स्रोत रहते तेमन बड़ा खतरनाक रहते है मन, बिना जाने पानी में कम से कम पैर नहीं रखना चाहिए उसने जगह मन में। चलो आपसे बातचीत करके हमला बहुत बढ़िया लगी से, और इसी तरह से जुड़े रहा भाई रेडियो के कार्यक्रम मन सा। आप लोग सुनवाबो नेक नेक गीत मन ला और एठाओ सुनैया संगवारी लाइन में है ओकर से गुड बात कर ले।
0: बिल्कुल
1: आप फोन कर रहे थे कर ले राम।
0: हेलो
1: हेलो। हाँ कार्यक्रम तुहर गोट और हमर गीत में स्वागत है आप मन के। कहाँ ले बोला था आप मन, कौन बोला था?
0: हैदराबाद ले राम कुशल पटेल बोला था भैया।
1: राम कुशल पटेल जी कार्यक्रम में आप मन के गाड़ा गाड़ा स्वागत है भाई। तो हैदराबाद आप मन बुता काम के सिलसिले में गए हैं?
0: हाँ बुता काम से मिस्त्री काम करता भैया।
1: अच्छा अब यहाँ कहाँ है आप मन के गाँव?
0: मेघा पारा है भैया लोरी जी मुंगेली जिला थे।
1: अच्छा तो आप मन ए मन नेट के माध्यम से आप मन कार्यक्रम मतलब हमार सुन ले था कदेवा?
0: हाँ मोबाइल ऐप
1: मोबाइल ऐप
0: में हर कार्यक्रम ला।
1: हाँ हाँ हाँ चला।
0: हाँ
1: कैसे लगते हैं आप मन ला कार्यक्रम है हमारे बिलासपुर के?
0: बहुत सुख घर लगते भैया अपन देश के गोर बात ला मोबाइल ऐप के माध्यम से सब सुना था।
1: चला बहुत बढ़िया है भाई। तो आप
0: कार्यक्रम ला सुना था भैया काम भी करा था मस्त।
1: अच्छा
0: गाना अपन सुना था जानकारी लेते था हर कार्यक्रम ला सुना था।
1: चला बहुत बढ़िया बात है भाई। और आप मन अब बाहर में हाँ दूर दूरिया जगह में हाँ तो अपन गाँव के सुरता तो आते हो ही का देवा?
0: हाँ आते सर
1: चलो ठीक है। और पानी
0: मतलब मोबाइल मोबाइल सुन के गाना उना सुन के सब जानकारी ले लेके अपन मस्त टाइम पास करते हमला नहीं लगा कि हैदराबाद में हम तो बिलासपुर माने से लगते हमला भैया।
1: अच्छा चलो यह बहुत बढ़िया बात है भाई। हमारे रेडियो के बहुत अच्छा है कि आप मन के जो धागा है डोर है माया कहते हैं अभी भी अपन क्षेत्र में ही बंधे हुए है और अच्छा
0: हाँ
1: लगता है जैसे आपन धुरिया में रहता गुड बात करता था। आपसे बातचीत करके बढ़िया लगे सर रामकुशल भैया। एठा नीक से गीत आप तक पहुंचा था सुन ले अपन सब सुनैया संगवारी मन गीत लगावत है कांति यादव और गीता भट्ट मन।
0: धन्यवाद
1: आप फोन कर रहे थे कल लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: हेलो
1: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में सुनैया संगवारी के स्वागत है। आप मन कहाँ ले बोलत है संगी?
0: जय राम भैया, जय राम।
1: जय राम संगी, कहाँ ले बोलत है आप मन?
0: सहसपुर लोरमी से बोला था भैया,
1: आप मन के शुभ नाम?
0: मोहित राम साहू।
1: मोहित राम भैया, कार्यक्रम में आप मन
0: हाँ सर,
1: के गाड़ा गाड़ा स्वागत है भाई। अब बताओ
0: पहली बार लगे सर, आप मन प्रोग्राम बहुत सुनते रहे। हाँ,
1: अच्छा,
0: ईमेल भी पत्र भी देते थे सर,
1: बहुत
0: फोन में
1: बढ़िया।
0: आज पहली बार लगे हैं।
1: देखा यह कहे लगन है आप मन के भाई, और आप मन की इच्छा रही से रुचि है, ते नाम से आप फोन ले ट्राई करे है तो लग गए है। बहुत बढ़िया बात
0: आओ, सही सर, सही बात, सही बात सर।
1: है ना
0: हाँ
1: भाई? और कैसे है आप मन डहर पानी पानी कांजी कैसे गिरा थे और का
0: अब सर,
1: हालचाल
0: पानी
1: है?
0: पानी गिरे थे, गिरे थे पानी गिरते थे,
1: पानी गिरा थे ना?
0: बादल भी छाए अभी।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: चलो भाई ये मौसम में अब ऐसे कि एक पुरुत के लगभग खेती के बूता है सबे के है निपट गया हवा है।
0: हाँ निपट गया, चलता है सर, मजे
1: हाँ
0: दिखा रहा है हमारे, मोट बजे अभी।
1: अच्छा, हाँ
0: हाँ
1: थोर
0: बिया
1: थोर
0: का।
1: थोर बहुत बाहर से कर देवा,
0: हाँ सर,
1: चलो बढ़िया है भाई। और इधर पानी है तो बढ़िया है, कोई कमी नहीं है भाई पानी के। अब लगभग सबे के है खेती है इधर के हो जाए ही।
0: हाँ सर, इफरात पानी है अभी।
1: हाँ यदि
0: हाँ
1: अभी
0: किसान उनके लिए।
1: कॉलेज देखा ना, तीज तिहार अपन दे सुंदरबन जाके राखी के तिहार माने हन, भोजली सरवाए हन कॉलेज के तारीख में है ना।
0: हाँ
1: और
0: हाँ हाँ है तो बोन तक नहीं सर, हेजन बात करत रहन, हम का भोजली से कि मोला बोले हुआ
1: हमारे वो परंपरा है
0: का
1: छत्तीसगढ़ के वह हा,
0: वो छत्तीसगढ़ के आदमी, वो राजिम दहर के पूछो ना,
1: हा,
0: काय भोजली जी ऐसे मोला गया,
1: ए,
0: भोजली जाना चाह रहे कहाँ मोला
1: ओकर
0: गया
1: बहुत
0: सर।
1: बड़े महत्तम है भोजली के। वह ऐसे कि मित्रता के वह सबसे बड़े प्रतीक है, वह मित्रता के है
0: हाँ सबसे बड़े पति मित्रता और भाईचारा के समान बढ़िया होगा,
1: ना
0: वही
1: भाई?
0: मिलता जुलता सब संग होते सर।
1: बिल्कुल। अब एक घर भोजली बदारी तो जिंदगी भर के वह रिश्ता बराबर हो जाते, नाता हो जाते एक
0: जी सर, जी
1: प्रकार
0: सर,
1: का।
0: जी सर, हाँ
1: चलो बहुत
0: पूरा
1: बढ़िया,
0: परिवार समेट लेते।
1: समेट लेते। बहुत बढ़िया लगे से मोहित राम भैया आपसे बातचीत करके। हमला एठनीक सही
0: हाँ
1: गीत
0: सर,
1: पहुंचाबो आप मन तक में, और पहली एठा सुनैया संगवारी लाइन में है, ओकर सो गुड बात कर लेथन।
0: जी सर,
1: राम राम, जय जोहार।
0: राम राम, जय सर।
1: हाँ
0: हेलो,
1: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम आए संगी, आप मन के स्वागत है जी। कहाँ ले बोला था आप मन, कौन बोला था?
0: हाँ मैं बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य ले बोला था भैया, रामचंद्र माखीजा काकर भाई।
1: रामचंद्र भैया का कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है भाई, आत्मीय स्वागत है, गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है। अब बताओ कैसे का बूता काम है, का हाल चाल चलत है?
0: हाँ मदन पांडे भाई, अभी तो बूता हुई भगवान के, अभी बीत गए रक्षाबंधन, अभी आते भोजली हो गए, और अभी आते अपना 4 सितंबर के कृष्ण
1: हाँ
0: जन्माष्टमी, एक आप पूरा आकाशवाणी पर गड़ा गड़ा बधाई।
1: बिल्कुल, जन्माष्टमी आठे कन्हैया, ये बहुत ही बढ़िया पावन त्योहार है, बहुत ही उल्लास रथे, जगह जगह मेला भरा
0: हाँ
1: थे। हाँ,
0: हाँ ये दिन व्रत पूजा उपवास करे जाते, भगवान के बालपन के मूर्ति ला झूला में पलना में झुलाए जाते प्रेम से,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: भगवान
1: बिल्कुल
0: कृष्ण जो है ऐसे टाइम में पैदा हो रही, अंधेरी रात करियापन
1: बिल्कुल
0: और कारागार में
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो वह संदेश मिलते हैं, और बरसात गिरे और टाइम में वो एक बार टाइम में रही, तो
1: हाँ बिल्कुल, जमुना जी में बाढ़ आ रही इसका
0: हाँ, तो एक संदेश है हमारे जीवन के, हमन बोलते हैं हमारे जीवन में ऐसे होते वैसे होते, तो
1: हाँ
0: भगवान ने खुद कर्म के फल बताए हैं, दो मार्ग,
1: बिल्कुल,
0: कर्म करो और अपना फल की इच्छा मत करो,
1: मत करो निष्काम कर्म
0: और
1: करो
0: ज्ञान मार्ग है,
1: सही।
0: ध्यान से भगवान की पूजा करना है, और
1: और
0: काबर की शरीर नाशवान है,
1: हाँ
0: आत्मा अमर है, तो भगवान से प्रेम जरूरी है,
1: बिल्कुल जरूरी है। और
0: और
1: रामचंद्र भैया
0: मक्की फोड़ भी रहते भैया सांस।

0: कार्यक्रम
1: अरे ओकर
0: रास लीला
1: उल्ला
0: वगैरह बाल लीलाओं के बारे में करे जाते प्रोग्राम
1: सब
0: लोग
1: के सब बड़ा
0: बाकी।
1: उत्साह मेला के आयोजन एक प्रकार से मेला के रूप धारण कर लेते नहीं कहुंच करके भी।
0: हाँ भी
1: साथ
0: बस
1: में भगवान ये भी संदेश देके गए हैं कि मुसीबत और आपदा सिर्फ मनुष्य मन ऊपर में नहीं आए, वह भगवान ऊपर मन में भी आते और सबे ओकर से अछूता नहीं है कहना चाहिए।
0: हाँ
1: इसलिए
0: भी
1: है ना
0: है
1: भाई, आदमी ला विवेक से अपन आगे बढ़ना चाहिए अपन कार्य मतलब कर। चलो बहुत बढ़िया लगी श्री रामचंद्र भैया आपसे बातचीत करके हमला
0: ओके भैया।
1: निक
0: वंदे
1: सही
0: मातरम सर,
1: वंदे मातरम और जय जोहार।
0: जय जोहार।
1: हेलो
0: हाँ मैं टेलीपारा बिलासपुर से रंजन साहू बोल रहा हूँ।
1: रज्जन भैया, कार्यक्रम में आप मन के बड़ा मीठ मीठ स्वागत है भाई। अब बताओ क्या का हाल चाल है।
0: सब बढ़िया हवा का, कल पानी सब भुजली के बिगाड़ दी प्रोग्राम ला।
1: ताले उल्लास में कोई कमी नहीं है इसे काल भोजली उतके उत्साह उल्लास के साथ में विसर्जन करी है पचरी घाट में। हम तो देखें भाई बढ़िया सुंदर मेला टाइप के। ओ भीड़ कत का न कत का भीड़।
0: नहीं भीड़ तो फटेहार रही थी
1: हाँ अब भोजली है हमारे समझ लो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार कहना चाहिए। मैं मित्रता के मैं एक दूसर से भोजली के जो आदान प्रदान है तेकर कत का सुंदर नैना भी
0: हाँ
1: राम
0: हो हाँ
1: दृश्य
0: हाँ
1: रहते।
0: हो
1: हाँ
0: आओ भैया का
1: बस
0: हाल चाल है आप मन के। हाँ
1: ए दे आप मन के सुख हमन के सुख भाई, आप मन से गुड बात करता हूँ तत्का में हमन के मन है सब मीठ हो जाते अच्छा लगते संगी। और
0: हाँ ना जी
1: है ना आपसे फिर सुने में मिलते भाई कि इतने सुंदर ढंग से पारंपरिक त्योहार मन ल मनाते हैं ते सब बड़ा।
0: हाँ
1: और रज्जन भैया आप मन गए रहे देखे वो भोली विसर्जन ला। हाँ
0: हाँ गह रहे होगा
1: हाँ
0: पचरी घाट गह रहे हो
1: और कई जगह अभी तो
0: भाई।
1: कई कई गांव मन में ऐसे है कि आज भोजली विसर्जन करते हैं।
0: हाँ, बहुत जन वो तिथि के अनुसार
1: तिथि के अनुसार भी करते हैं वैसे तो
0: वो
1: रक्षाबंधन
0: करते
1: के
0: हैं बहुत लोग।
1: दूसरा दिन कर देते हैं और जहां जहां किसी कारण से बच बच भी जाए रहे तो ही ते मतलब आज के दिन विसर्जन करते हैं। और
0: हाँ
1: गेड़ी है तो चलते अच्छे संगी
0: हाँ गेड़ी वाले प्रोग्राम भी हो गए अभी तीजा
1: पोला में ओहू कर विसर्जन हो जाते गेड़ी के घला
0: फोरा।
1: तीजा पूरा में। चलो बढ़िया लागे भाई। चलो भाई आप मतलब शुभकामना है बधाई है आने वाला जन्माष्टमी के त्योहार है ओकरो बधाई है आप मतलब सब झनला।
0: आपका पूरा आकाशवाणी परिवार ला भाई जन्माष्टमी के बधाई। वैसे तो अभी मैं प्रोग्राम भेज भी करी हूँ।
1: ले आप मतलब सुनवा थे रेठा नीक सही गीत ले सुन ले अपन सब संगवारी में सुन गीत मा स्वर है बसंती किस्मत और पद्मा के
0: हाँ
1: आपन फोन करे हैं ते
0: ठीक
1: कर लिए
0: है
1: धन्यवाद भैया राम राम।
0: हाँ।

0: हेलो।
1: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में अपन सुनैया संगवारी के स्वागत करत हन भाई। कहाँ ले बोला था आप मन? कौन बोला था?
0: राम राम भैया। राम राम।
1: राम राम। कहाँ ले बोला था संगी?
0: मैं चोवाराम वर्मा भाटापारा बोला था।
1: चोवा राम वर्मा भैया, कार्यक्रम में आप मन के सुघर स्वागत है भाई। नीक सही स्वागत है। और बतावा, का का बुता काम
0: बस
1: चलत है? का
0: बढ़िया।
1: का माहौल है? कैसे है वहाँ के पानी बारिश
0: बस पानी वानी गिरा सुबह, बढ़िया माहौल, अच्छा लगा थे।
1: और पानी के वो अल्टीमेटम हवा है, पानी के अभी पूरा भी लगन बने हुए है पानी गिरे। और एक अलावा कल भोजली वोजली विसर्जन हो गया आप मन डहर?
0: हाँ, कल कल होइस ना, कल होइस।
1: और एति आगे देखा
0: अब
1: भाई,
0: जन्माष्टमी है, ये कमरछा टेकन में तैयारी चलत,
1: ये मन के तैयारी चलत है। ओइला अभी एक जनाऊ श्रोता करा हमन गुठियान के हमर छत्तीसगढ़ में त्योहार है ऐसे, जैसे एक लेवल के एक त्योहार हमारे यहाँ है और सब में पारंपरिक
0: जी जी
1: है ना भाई, उल्लास भाईचारा।
0: हमारे राम सप्तक प्रोग्राम होते सर।
1: हाँ,
0: बहुत भय जुलूस निकलते, भयंकर, मतलब आठ एक बिहान हुआ।
1: हाँ,
0: चला था प्रोग्राम राम नाम सप्ताह,
1: बिल्कुल
0: 8 दिन के लगातार थे, मतलब 8 दिन के लगातार चल।
1: हाँ बिल्कुल, उत्सव मन के कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ।
0: जी जी सर।
1: और हर उत्सव हर त्योहार है कुछ न कुछ पारंपरिक प्रेम और सद्भाव ही सिखा के जाते हैं हमला।
0: जी
1: ठीक कहा था चोराम भैया। और एक अलावा बरसात के यदि मौसम है भाई, लड़का मतलब पानी कांजी में ज्यादा झन निकलन देवा।
0: हाँ, पानी कांजी, तबियत थोड़ा गरम गरम हो, सर्दी जुकाम खांसी
1: का है लड़का मन,
0: खुला
1: गरम
0: पान के पिया इसी टाइप की चला तो।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य संबंधी सावधानी के साथ साथ का देखा लड़का मन के पैर है जब भीगे में गीला में निकली खाली पैर, मतलब केंदुआ चरना स्वाभाविक
0: जी जी
1: है ना भाई। तो इस तरह से और कई जन घाव घला हो जा रहे थे मौसम में, घाव आमन में इन्फेक्शन जल्दी होते, इसलिए कभी भी लड़का मतलब घाव खुला नहीं रखना चाहिए।
0: आप कौन बोल रहे?
1: मैं मदन भाई बोला था वहाँ अपन के रेडियो संगे।
0: अच्छा,
1: ले बढ़िया लगी सर आपसे बातचीत करके चोराम भैया। एठा नीक सही गीत,
0: पहली बार बात हुई आपका।
1: बिल्कुल, आपसे बढ़िया लगी से बातचीत करके। एठा बढ़िया सही गीत सुनाबो, ओकर पहले एठा सुनैया संगवारी लाइन में है, ओकर से गुड बात कर ले।
0: राम राम।
1: राम राम, जय जोहार।
2: हेलो,
1: तुहर गोठ हमर गीत।
2: नमस्कार।
1: हाँ, तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम है संगी, आप मन के स्वागत करत हन। नमस्कार, जय राम। अब बतावा कहाँ ले बोला था, कौन बोला था?
2: मैं ग्राम मोखेतर थाना रंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से नरेश साहू बोला था सर।
1: नरेश भाई, कार्यक्रम में आप मन के बिल्कुल हृदय ले स्वागत है, मीठ मीठ स्वागत है। अब बतावा का का बुता काम चलत है?
2: अब काहे हमें अभी किसानी काम चलत है, वही चलाई काम ने चलाई खातू वातू के खाद वाद डाले के काम चला थे का।
1: बियासी वगैरह का देवा।
2: हाँ।
1: चला बढ़िया है नरेश भैया। और एकर संग में दे तीस त्योहार मानत मानत दिखाई दे, सुंदर मजा के राखी हो गए, भोजली हो गए है ना, कई हाँ, त्योहार हाँ। मनाए हैं तो बढ़िया मिठाई विठाई खाए हवा।
2: हाँ हाँ, खान न राखी उखी तक को मना है।
1: हाँ
2: हाँ, तो मीठ मीठे पेड़ा वेड़ा मिठाई उठाई खान गा।
1: चलो बढ़िया है भाई। और त्योहार तो एक ले एक के बाद एक, एक के बाद एक कई त्योहार अभी लगे, तीजा है, पोला है।
2: अब काय पप, हर 15 दिन में तो त्योहार हावे।
1: हाँ,
2: तो हमने ये आप मन के कार्यक्रम में पहली बार फोन लगाएंगा।
1: ओहो, तो फोन लग गए लगे आप मन के?
2: हाँ,
1: कतका खुशी के बात है देखा। तो अब देखा
2: बहुत खुशी लगत है। वैसे तो हमने रेडियो से 87 से जुड़े हुए हैं।
1: वाह भाई वाह भाई, का संदेश

0: देना चाहा था सब सुनैया संगवारी मतलब अपन हृदय की बात।
1: यही है अब का है, अच्छे से रहे, अच्छा से ये अब काहे, अब तिहार हार भी अब ये जन्माष्टमी आने वाला है,
0: हाँ
1: वो ओकर बाद गणेश चतुर्थी है, वो पोला तिहार आने वाला
0: बोला है।
1: है।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो इस तरह
1: अब
0: से
1: हर 15 दिन
0: सबके
1: में तिहार है, अब काहे तिहार नहीं मनाही, ये तो लोगन ला छुट्टी भी नहीं मिले, ले किसान मन ला
0: चलो
1: यही एक बहाना हो जाते।
0: यही एक बहाना हो जाते आपसे बढ़िया लगे से
1: हाँ
0: बातचीत करके नरेश भैया। एठाउ सुनैया
1: हाँ
0: संगवारी लाइन में है संगी ओकरो से गुड बात कर लेथन तेकर पीछू आप लेठन निक सही गीत सुनवाबो आपके गांव मुखे तरह तक भेजबो। तो राम
1: जी
0: राम राम जय जोहार।
1: जी जय जोहार। हेलो,
0: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में स्वागत है संगी। कहाँ ले बोला था कौन बोला था?
1: धन्यवाद भैया। मैं कमलकांत मरावी लोरमी ग्राम छछड़ी बोला था भैया।
0: कमलकांत भैया कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। तो रेडियो के सब कार्यक्रम मन संग में तो आप मन के लगातार जुड़ाव रहते भाई आओ सभी श्रोता की तरह आप भी बहुत सब बढ़िया सुधी श्रोता है हमारे। और बतावा कैसे लगते कार्यक्रम मन हमारा अभी?
1: कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया लगते भैया, सवेरे
0: हो
1: सुनथन, दोपहर के, शाम के सुनथन,
0: हो
1: सब से आकाशवाणी बिलासपुर के जम्मू कार्यक्रम ला सुनत रहता भैया, ईमेल वगैरह भेजत रहता।
0: अच्छा। अभी बरसात के ये मौसम में कमलकांत भैया देखा ऐसे कि भोजन के मामले में हम समझते स्वास्थ्य सेहत के जहाँ तक बात किया जाए तो भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाते संक्रमित हो जाते। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहते?
1: मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि बरसात के समय में भोजन ताजा खाना चाहिए
0: बिल्कुल
1: और अच्छे अच्छे फल फूल साफ सुथरा खाना चाहिए भैया।
0: बिल्कुल मतलब जितना ज्यादा स्वच्छता के पालन करबो उतके हमारे स्वास्थ्य है अच्छा रही
1: अच्छा रहे।
0: है
1: हाँ
0: ना। सोते समय मच्छरदानी के प्रयोग जरूर करके करना चाहिए आदमी ला है ना। मच्छरदानी के जो प्रयोग है ते हैं आदमी ला काफी सुरक्षित रखते। अच्छा लगा थे कमलकांत भैया आपसे बातचीत करके। और सुनवा था रेठा सुंदर सही निक सही गीत आपके गाँव तक पहुँचा था सुन लेवा अपन साहब सुनैया संगवारी मन सा गाय हमें सहरुबाई मन।
1: धन्यवाद
0: आप
1: भैया।
0: फोन करे हैं तो कलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।

एनिक सही कार्यक्रम ला आप मन तक पहुंचाए में हमन ला कुशल तकनीकी सहयोग दिन है गौरी शंकर कौशिक मन और एकरे संग हमर जाए के बेरा हो गए संगी हो। कार्यक्रम के अगला अंक में आबो ता आप मन सो गाढ़ा गाढ़ा गुड बात करबो। तब तक मैं दयाला अचरा में गठिया के रखिया। राम राम, जय जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। आज की प्रस्तुति थी मदन पांडे की। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की है। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश। शांतिनगर भाटापारा से रमज़ान खान, सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फेज खान, मेजबीन बानो, सादिया खान, हजरुन निशा और भाटापारा से ही दुर्गायश साहू, अश्वनी कुमार और समीर टंडन। भाटापारा से हैं हमारे ये साथी भी पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश, हारेंद्र और सुशील। पीपरपारा पालचुआ मुंगेरी से हमारे श्रोता हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर। और भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ, नीरज रावत। रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, अदिति और तन्मय यादव ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। खुर्द से एक पत्र मिला है सुधाकर राजेत जाधव का, साथ में है प्रशांत जगुताई, साक्षी, संचित, प्रथमेश, स्वामी देशमुख, प्रणाली और सानवी। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल। बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, तन्मय, अनिष्का, राधिका गजभैये। यवतमाल विदर्भ से संतोष खडसे और विनोद खडसे। बागबहरा से पन्नालाल सेन, तारासेन, कौशल और खुशबू सेन। पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। माँ समुद्र से वली उल्लाह, डबुलू उल्लाह और परवीन आसमा। बुलंद शहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। भाटापारा से मोतीलाल, संतोष कुमार, मुंडुल यादव। सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार, प्रीति यादव, योग कुमार और मोक्ष कुमार ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी।

है। तो इन सभी श्रोता साथियों के अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मनहत उदास की आवाज़ में हीरो फिल्म का ये गीत।

0: जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, पेश है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में राजा बाबू फिल्म से। बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है आनंद चित्रगुप्त ने और फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों ने लिख भेजी है, जिनके नाम हैं राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर प्रेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा देबू और लबी श्रीवास्तव, बुड़गहन से राम दुलारी, प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार, मर्रा कोना बावली से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार, शिवम कुमार, धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, पूजा, माही, शरद, छुटकी और इनका पूरा माखीजा कुटुंब, दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मीना, लालपुर से लुकेश यदु और समीर यदु, अवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू और गणेश धाम से मिलौदास, जयदास, देवेश मानिकपुरी ने भी इसी गीत की फरमाइश भेजी है। शांतिनगर भाटापारा से हैं कुलदीप, संतोष, संदीप, मिलौ, अजीत, बिरछा, संजना और लक्की, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, सारागांव से सुजान, सोहद्रा, आयुषी, कृत वर्मा, दतरंगी से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, लाहौद से कमलकांत, कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन और प्रांजल चंदन, बगबुड़वा से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने भी इसी गीत की फरमाइश भेजी है। तो इन सभी साथियों की पसंद पर लीजिए पेश है राजा बाबू फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार शानू और श्रद्धा पंडित के युगल स्वर में संघर्ष फिल्म से। रचना समीर की है और धुन बनाई है जतिन ललित ने, और पसंद करने वाले हमारे साथी हैं भाटापारा से हैं बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज पारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और अनीशा, रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम। और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है हथनी पारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा और हरीश किरण दुलारी वर्मा ने भी। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मयाराम, पुनेश्वर, फनेश्वर, मुकेश, हाव्या और सानिया रजक। सतरंगी से हमारे साथी हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गा राम साहू, अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल, कल्पना, बिट्टू, चिंटू, युग कुमार, भाटापारा से ही हैं हमारे ये साथी भी, राम कुमार, अमरीका, गणेश, कार्तिक, युवराज, महावीर वार्ड भाटापारा से अमृता, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा, डिम्पी और हथबंध नेवधा से दुलारी यादव, प्रियंका, प्रीति, उमेश्वरी, सुनती यादव, तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास, अंबागर चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, खुमेन, तुषारिणी और अम्बागढ़ चौकी से ही रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान खान।

भाटपारा से प्रेमलाल, उपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र, मोहनपारा कलतरा से अभिनव अभिषेक, उमा देवी साहू। और एक और पत्र आया है भाटापारा से ही, रजनी, पूजा, सोनाली, रेणु का। तो इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है संघर्ष फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है अमित कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ में त्रिदेव फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की लिखी रचना और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। हथबंद करेली से रामाधार ध्रुव, भूपेश कुमार ध्रुव, राजापुर से मानिक राम प्रजापति, जानकी, घनश्याम, हरिशंकर, प्रशांत, रत्नेश प्रजापति और कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और राम राजवाड़े। मगरपारा बिलासपुर से हैं रेणु शुक्ला, राजेश शुक्ला, वैभव, विनी मिश्रा, सिद्धि और सरस्वती देवी शुक्ला। कटई नवागढ़ से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा। महानदी सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन। अगलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त और शक्ति से हैं श्याम शंकर, विजय, रागनी, गीता देवी, कुसुम, काशीपुरी, राधा और कैलाश चंद्रवती। जांजगीर से हमारे साथी हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी और प्यारे लाल मिश्रा। इंदिरा नगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए, पेश है साधना सरगम की आवाज में विश्वात्मा फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना, विजू शाह का संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन, बसीबार से शिव नारायण, नामदेव, सविता देवी, आंचल चंचल, चांदनी, विनय, वर्षा, मनोज कुमार और शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह, संतोषी, आरती पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी, संतोषी, दुलोरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी, प्रीतम कुमार, छत्रपति, संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश, जुराली से देवचरण पटेल, अंजुरमती पटेल, भूपेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, दक्ष कुमार, दिव्यांश कुमार और कुणाल कुमार, बेमित्रा से सुरेश पूर्णिमा और इनके साथ ही, जांजगीर से नारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुमलता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप।

श्रोताओं, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे विश्वात्मा फिल्म का ये गीत। और इस आखिरी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के इस वक्त 11 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियाँ भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं।

0: लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो 3-4 यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमल।

0: नायडू का एक दूरदराज इलाका है।
1: जी।
0: धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो 3-4 यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
1: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यू शेराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले

0: कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तब मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1800

0: 1974 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
1: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, न पढ़ना न लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
2: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है, क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
1: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
2: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है,
3: ना जाने क्या होगा इसका।
2: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
3: अरे वो सब तो ठीक है, पर
2: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
5: ऐसे कैसे?
6: जोर से मारना।
5: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ।
7: हाँ हाँ आते हैं।
5: सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो?
6: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
5: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
7: कैसा प्रयोग?
5: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
6: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
5: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
6: अच्छा
5: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
2: अच्छा।
5: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुंचते ही घंटी बज उठेगी।
7: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
5: फिर जाओ ना। पहुंच गए?
7: हाँ हाँ।
5: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
7: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
6: अरे वाह, अरे वाह,
7: क्या
6: बात है!
7: मार्कोनी, क्या क्या बात है!
6: अरे ये तो जादू की तरह लगता है।
2: वाह, क्या बात है!
6: अरे वाह,
5: सिग्नल मिला?
6: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
0: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी

0: की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
1: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है।

0: रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश

0: संचार संभव न था।
1: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
0: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
2: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
3: अरे अरे भागो भागो बाहर निकलो, भागो डेक की ओर भागो।
4: क्या हो गया?
5: अरे ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
4: शांत हो जाइए,
6: शांत हो जाइए। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
2: जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरे।
7: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
2: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प लाइफ सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
6: जल्दी जल्दी करो,
2: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
8: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
0: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
1: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
0: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: पीटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो विश्वास ही नहीं होता। विश्वास
3: नहीं होता। मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूं जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
7: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11:55 पर प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी रायपुर की ओर। तो चलिए फिलहाल इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।

0: आइए सुने अगला गैर फिल्मी गीत शोभा मुदगल की आवाज में। रचना है अनिल पांडे की, संगीत रचना संदेश शांडिल्य की, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।
1: तुझसे दूर है जाना इसमें

हर तरफ धुंध है, जुगनू है, ना चराह कोई कोई पहचाने का। बस्ती में अगर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। गुलुकार गुलाम अली की आवाज में समात कीजिए शायर मोइन नजर का कलाम। एल्बम का नाम है तेरे शहर में।

बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है। और घर जो कहीं नहीं है इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए चंदन दास की आवाज में, एल्बम का नाम है।

आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में आज रोड शो आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। इस कार्यक्रम में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र मंत्रालय की सचिव के साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति, स्कॉलर और पास होने वाले छात्र शामिल होंगे। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए आज नवा रायपुर में रोड शो आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोयला तथा खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नीलामी के 8वीं किस्त में 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए हैं। इनमें ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वैनेडियम, टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज शामिल हैं। रोड शो में निवेश और नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा होगी, साथ ही टिन पोर्टल और ई रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में BSc कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसलिंग 2 सितंबर तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण, महाविद्यालय आवंटन और ऑनलाइन फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय ने संबंधित दिशा निर्देश अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE में सफल उम्मीदवारों के लिए रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली मध्य प्रदेश के सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पदों के लिए उम्मीदवारों को 12 अक्टूबर और अग्निवीर महिला सेना पुलिस पद के लिए 14 अक्टूबर को रिपोर्ट करना होगा। योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट और उनके ईमेल पर भेजे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में स्वाइन फ्लू H1N1 के 10 नए संक्रमित मिले हैं।

जिससे कुल मामलों की संख्या 105 से बढ़कर 115 और एक्टिव मरीजों की संख्या 18 से बढ़कर 28 हो गई है। राजधानी रायपुर में 3 नए मरीज मिलने के साथ ही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 54 हो गया है, जबकि सक्रिय मरीज 6 से बढ़कर 9 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खुद से दवा न लेने और लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, गरियाबंद, कोरबा, बिलासपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा में ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ भारी बारिश होने की आशंका है। इसी तरह बालोद, धमतरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और सूरजपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में आज रोड शो आयोजित किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना

नदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया आईएनएस निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में

उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहली दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नाओन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ यादगार सदाबहार गीतों की माला से। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं जीएल रावल, संगीतकार हैं सोनिक ओमी। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है आरजू।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल में सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है राजा और रंक।

इंदिवर का लिखा गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है पारस।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। आइए सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए आए दिन बहार के।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है नीरज, संगीतकार है सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है शर्मीली।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में हमारे हम सफर बनकर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के आगाज में एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि आज की इबारत क्या है। मोहब्बत कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार यहाँ जो ना करे वो खाक जिए खाक मरे, मर के भी जो ना मिटे ये वो दीवानगी। दूर रहे पास रहे दिल में तेरी प्यास रहे, प्यार के बिना ये भी कोई जिंदगी है। इसलिए उस बेखबर को कोई ये खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, क्योंकि आशिकी इम्तिहान लेती है। फिर भी पागल प्रेमी कहता है कि मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। तेरी गोरी रंगत का तो बड़ा चर्चा है, जब तू कमरे में चांदनी बनकर आई तो बिजली का क्या काम है। इसलिए झूठा है यह गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, और सच्चे प्यार को तड़पाना अच्छा नहीं। तो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ये शोखियां ये बागपन, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये रुत प्यार की जुदाई में गुजर जाएगी, मेरी याद तेरा दिल तड़पाएगी, तौबा तौबा फिर क्या होगा। आखिर तो आप फूल हैं फौलाद नहीं, बुलबुल है किसी बाग की सयाद नहीं। शमा के परवानों को इस घर के मेहमानों को ऐसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को कि एक से भले दो छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ मैं दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की आवाज हूँ। अनहोनी पग में काटे लाग बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, फिर दिल वाली क्यों घबराए।

तो सुरीला सफ़र के हमारे बहुत सारे साथी हम सफ़र बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में बन के हम सफ़र हम और आप मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश।

मोहब्बत रूह का वो नूर है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। जो इस आग में ना जला उसने जीना ही कहाँ सीखा। ये वो इबादत है जो फासलों को मिटाकर धड़कनों को एक कर देती है। कोई जाकर मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत

मिटाकर धड़कनों को एक कर देती है। कोई जाकर मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत में मैं मिटता है और सिर्फ तू ही बचता है। इसके बाद अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि प्यार एक साधारण इंसान को भी शायर और पूरी दुनिया को एक खूबसूरत ख्वाब बना देता है, और एक पागल आशिक के लिए उसका महबूब ही उसकी बंदगी बन जाता है। तुम्हारी आंखों के आईने में मैं अपनी पूरी हयात देखूं, अगर अगर मिले जो तुम्हारा साया तो धूप में भी बारात देखूं। अच्छा, अगला ये मैसेज हमें मिला है कि दो दिलों की मोहब्बत भरी दीवानगी दास्तां बयां करती है। दमदार इबारत है, कायनात की इस कुदरती करिश्माई तोहफा मोहब्बत की तड़प तन्हाई का खूबसूरत चित्रण प्रेमी युगल के बेसब्री बेकरारी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। और प्रेमपूर्ण संगीत सफर के इस कार्यक्रम में हम श्रोतागण डुबकी लगाकर तर जाने को बेकरार रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत में तो हमने आपको कुछ संदेशे पढ़कर सुना दिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर, पद्मिनी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात, और बचपन में बिछड़े तीन भाई उनके माता पिता की हत्या का बदला लेने और बिछड़ कर फिर से मिलने की एक क्लासिक कहानी थी यादों की बारात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में जो सबसे छोटा बच्चा था वो आज का बड़ा सुपरस्टार है, कौन है वो? और इस फिल्म में खलनायक अजीत का नाम क्या था, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम भी हमें बताएं। तो ये तीनों बातें आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तब तक सुनते हैं ये खास गीत। इस खास गीत के जरिए बिछड़े भाई कई सालों बाद आपस में मिलते हैं।

आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा था आमिर खान, और जो फिल्म में खलनायक थे उनका नाम था शाकाल, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे वो थे विजय अरोड़ा। एक मित्र ने ये मैसेज भेजा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम इतना सुरीला होता है कि हर दिन इसके साथ दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और ये क्या लिख दिया आपने कि आज की इबारत में बहुत सारे गाने हैं, बस हमें लिखने का समय नहीं मिल पाया। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं।

साथियों, अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसी फिल्मों के गीत लेकर आए हैं जिनमें परिवार से बिछड़े लोग कई सालों के बाद आपस में मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला गीत है इस फिल्म का, जिसमें बचपन में बिछड़े तीन भाई अलग अलग धर्म और माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी में यानी कि अमर अकबर एंथनी में उनकी माताजी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम हमें बताएं, और साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट और किशनलाल कौन थे इसकी भी जानकारी हमें दे दे। इसके अलावा बिछड़ के मिलन की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं हमें वो भी बताएं। तब तक सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किसी ने लिखा है कि सुषमा श्रेष्ठ वही गायिका हैं जो बाद में पूर्णिमा बन गई, ऐसा मंदाकिनी जोशी ने एक कार्यक्रम में बताया था, तो बिल्कुल सही बताया था, सही बात है वो। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो कमेंट्स में हमें जवाब मिले हैं वो ये है कि निरूपा रॉय ने माँ की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और किशन लाल का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता प्राण, और फिल्म के मुख्य खलनायक रॉबर्ट का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता जीवन ने, जो एक बड़े बॉस और स्मगलर थे इस फिल्म में। तो साथियों हमें ये बताइए कि क्या आपके आसपास कभी ऐसा भी हुआ कि कोई बिछड़ के मिल गया, या कभी कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से

छड़कर आपको मिला तो फिर उसे कैसे घर पहुंचाया आपने, या कैसे उसे घर पहुंचाना चाहिए? कोई घर छोड़ के चला जाता है तो उसे खोजने के अभियान में आप भी शामिल हुए थे कभी, या किसी को ढूंढने में आपने कोई सहायता की थी? कभी कभी घर का पालतू जानवर भी खो जाता है तो क्या करते हैं आप, कैसे ढूंढते हैं, और मिल जाए तो कैसे पार्टी करते हैं? हम भी तो जाने, हम भी तो सुने। लिख भेजिए हमारे FB पेज पर, क्या कभी खोया पाया केंद्र पर गए हैं आप? कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो धर्मवीर फिल्म में दोनों बिछड़े भाइयों के रोल में कौन से अभिनेता थे, उनके नाम बताएं। वैसे इस फिल्म में एक हीरो का तो नाम छुपा है, और साथ ही अपने विचार भेज दीजिए हमें।

हमारे दोस्तों ने हमें जवाब भेज दिए हैं कि धर्मवीर में दो जुड़वा जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र, और उनके साथ में जीनत अमान और नीतू सिंह थी। एक दोस्त ने लिखा है कि सच्चे दोस्त समय आने पर काम आते हैं। ये कमेंट मिला है कि 4 साल पहले हमारा पालतू जानवर घर से गायब हो गया था। बहुत खोजा गया, खोया पाया केंद्र में भी गए और कुछ भी पता नहीं चला। बहुत दिनों तक घर के सभी लोग उसे ढूंढते रहे, उदास रहे, याद तो आज भी आती है। राहों में चाहे कितने ही कांटे हो, वक्त चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना ले आए, सच्चा प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्योंकि मोहब्बत फूल की तरह नाजुक जरूर होती है, मगर उसकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। मैं और तुम से हम हो जाना ही मोहब्बत है। प्यार का एहसास अपने आप किसी से रूह से निकलने वाली आवाज से होता है। वो किससे होगा या नहीं होगा या कहाँ होगा, ये कोई नहीं कह सकता। बस सब आत्मा और समय का खेल है। सुरीला सफर कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बातें, अपने संवाद, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने मैसेज, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं। तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुलीला सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। इस दार्शनिक गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम

मैं धर्म करम, जिसकी कहानी नाटकीय और भावुक थी, तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था और खलनायक की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ। ये कुछ कमेंट्स मिले हैं कि चार दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। त्रिमूर्ति, वक्त और संबंध, इन फिल्मों में एक बार बिछड़ जाते हैं और फिर सभी लोग दोबारा मिल जाते हैं। पहले फिल्मों की कहानी में ऐसा बहुत दिखाते थे कि एक भाई कुंभ के मेले में खो गया और फिर फिल्म के एंड में मिल जाते हैं। हमें लगता था कि ये जल्दी से मिल जाएंगे।

एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि इश्क प्यार मोहब्बत प्रेम में तो अक्षर भी अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। मोहब्बत जिसकी हमेशा से दुखदाई उसका अंजाम होता आया है, लैला मजनू सोहनी महवाल हीर रांझा हो या सात समंदर पार वाले रोमियो जूलियट, सभी के प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है। यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में, नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएं निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।

शर्म हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है,

हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज

एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदीवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माता जी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आई और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों, बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या हैं, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

सर पे

साथियों, हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस। अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अंजान और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। और गंगू गणपत की जो जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था, उनका नाम था डॉक्टर श्री राम लागू। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख उन्हें और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं, किंतु हमारे कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है। और ये एक मैसेज मिला है कि वक्त में अचला सचदेव ने जोहरा जबी का किरदार निभाया था, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और मेरी लिस्ट का पांचवा गाना भी शामिल हो गया है।

बढ़ा जा रहा है, समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

भारत में तो यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं, फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग

0: अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुक्कुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्ट

0: और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप ना केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
0: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 116 हो गई है, जबकि 546 लोग

0: लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर-20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है आराधना।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
1: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना, वो बहुत जरूरी है। बस वो मुलाकात होती रहे ये काफी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
2: बिल्कुल सही
1: दो
2: कहा।
1: लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
2: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
1: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तकरार होती है, तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में ही करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है, विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
2: और सोमवार के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल की जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में। और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
1: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था। और बड़ी बेबाक लेखिका मानी जाती है। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया
1: जी
0: गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है।
1: जी
0: उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है 5 बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी, कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थे सारा, और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो
1: जी
0: खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें
1: जी
0: प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं।
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में

0: ही ठहरना उचित होगा।
1: जी
0: जी जी जी इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
1: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
0: किशोर जी,
1: जी
0: आज तो आपकी छुट्टी है।
1: हाँ,
0: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
1: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
0: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
1: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
0: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
1: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खिलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी। रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं।

0: ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खिलावन शरण जी, भला आपको यह क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
1: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
0: क्या
1: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया?
0: अच्छा, वो क्यों भला?
1: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज छह आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
0: ये कैसे भला?
1: देखिए किशोर जी, आपने मुझे छह आने का टिकट दे ही दिया था।
0: हाँ,
1: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था, और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टॉलीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदा, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया।
0: तो
1: शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी, तो पास में 2 आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था, और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता, और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था, और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था, और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर यह ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया, मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
2: अब आप जाइए।
1: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
2: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
1: किशोर जी मैं चौंक उठा, मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी है? नहीं जाएगी यहां से।
2: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
1: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहां से कितनी दूर है?
2: होगा कोई 5 मील।
0: तो फिर आपने क्या किया?
1: किशोर जी मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा, पूरी तरह थका हुआ था।

0: धर्मतल्ला में कोई ट्रॉम नहीं मिली, इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। डेढ़ बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था। दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी। और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले ही चलो, कल सुबह होश आई जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका, या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
1: ओहो, ये बात है भिखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ है। अब मेरी सलाह ये है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे, कह
1: अच्छा,
0: गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब चला जाऊंगा।
1: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
2: आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारती
1: अंतराल के बाद।
0: से। अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे
1: जी
0: हैं तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य।
1: जी
0: शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती
1: जी
0: हैं। जीवन में यदि खुशियां हैं तो

0: गम भी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
1: जी ममता जी,
0: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे, बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे।
1: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं प्यार और विश्वास, ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
0: बिल्कुल। देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है। लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो मनु जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो, कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
1: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीजें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज और है ममता जी, कि जो चीज आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है, और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
0: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी
1: जी
0: दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 6 आने का टिकट भाग दो का इंतजार है, और देख इन्होंने सुन लिया। और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन, मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी। बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो
1: जी
0: सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में, तो
1: जी
0: लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार,
1: हाँ
0: और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है। तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
1: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं, यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वीमेन है, यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं, और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती हैं।
0: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है
1: जी
0: कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये

0: नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई एक जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका
1: हाँ
0: शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है।
1: जी
0: बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब
1: जी
0: प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं?
1: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ,
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
0: अभी गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं। बात यहाँ बच्चे की है तो ये बात बताना बहुत जरूरी है। कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के
1: हाँ
0: लिए
1: हाँ
0: बच्चे बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है।
1: हाँ
0: कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

0: और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: कई
1: कहा।
0: बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है
0: चंचल
1: दाम्पत्य
0: जी,
1: जीवन
0: यहाँ पर अब उल्टा
1: में
0: भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल
1: अच्छा तो भाई
0: दूंगी।
1: दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर, उबर कर बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए। और इस मतलब आध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है।
1: जी
0: दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
1: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है शोधा ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है
1: जी
0: दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी।
1: जी
0: जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम
1: जी
0: अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं।
1: जी
0: तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
1: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हमें हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहां कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले, तो शक कहते ना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ के लेने वाली बात है।
0: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है।

0: और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को, और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
1: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
0: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना
1: जी
0: महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है।
1: जी
0: इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए, और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना।
1: जी
0: तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को।
1: आप
0: फिलहाल
1: सुनते
0: सुनिए
1: हैं
0: ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान फिल्म, ये भी तो
1: जी
0: दाम्पत्य जीवन पर ही
1: हाँ,
0: आधारित
1: कि
0: थी
1: किस तरह
0: जहाँ
1: से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु तो आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है, जिससे इसमें एक बेहतरीन सूंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटो। और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहाँ केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर ये सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबाल कर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती है?
1: जी
0: चलिए हम बता
1: बताइए।
0: रहे हैं। तो हमारी श्रोता ने यह लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है, और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में ही लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाएं आप, तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं।

0: और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती हैं। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है? या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
2: एक भ्रम है लोगों में।
1: अच्छा,
2: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है।
1: Okay.
2: ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता है?
1: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
2: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
1: ओके okay.
2: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
1: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद।
2: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: जी जी जी, ओके।
2: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाए।
2: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
1: जी,
2: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
1: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
2: चाहेंगे। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
2: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है। इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल्प का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल्प पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल्प को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है। अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी जी,
2: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
2: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का, हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह, क्या झाग वाला शैम्पू है।
2: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी,
2: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चले जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
2: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
2: झाग वाला नहीं चाहिए।

0: अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार. अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है. और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं, तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है. कोकोनट ऑयल से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है, तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से, तो ड्राई नहीं होते हैं.
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं, तो कंडीशनर लगाना चाहिए. भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए. पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं. इसके बावजूद

0: चढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है, वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके,
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं।

0: रहता था, रोता कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे है जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
1: हाँ जी,
0: वो तेल से मेंटेन रहती है।
1: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक है।
0: साइंटिफिक, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं, तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है
1: जी।
0: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है
0: इकोसिस्टम के हिसाब से, अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने। इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
1: रूखे हो जाते हैं।
0: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहता है, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है, तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
1: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
0: हफ्ते में 2-3 बार। आप शैम्पू तो हफ्ते में 2-3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
1: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
0: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया, तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला
1: जी। वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
0: ये होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए
1: जी। बिल्कुल।
0: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है
1: जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
0: जो बालों में तेल लगाते हैं, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी। बहुत बढ़िया है। अब यहां पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: जमाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते, वो कितना नुकसानदेह। अब इस पर आ जाते हैं पहले। हाँ
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है, कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: है। मतलब ये जो कलरिंग करते हैं, बहुत
0: जी,
1: जो डार्क कलर्स अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही, वो जो बबैया शब्द है, अतरंगी कलर्स।
1: ये बढ़िया आपका फैशन है,
0: जी
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट।
1: आपको चलने वाला है
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है,
0: जी
1: आप सोचिए कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
0: बहुत सही बात है। मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हों, चाहे
1: हाँ,
0: वो
1: लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे यंगस्टर
0: ट्रेंड के
1: को
0: साथ चलने
1: ट्रेंड
0: की।
1: के साथ चलना, तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ। ठीक है,
0: हाँ
1: एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम ऐसे जनरलाइज में स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
0: लेकिन
1: करना
0: आपको
1: है।
0: देखना है कि
1: हाँ,
0: कितना नुकसान हो रहा है,
1: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर
0: तब
1: आगे
0: करिए
1: बढ़िए।
0: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं, और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
1: हाँ, जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है,
0: जी, उसको
1: कुछ
0: रोक सकते हैं।
1: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में, और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
0: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और
1: हाँ, अमोनिया
0: अमोनिया
1: से
0: फ्री
1: थोड़ा
0: कलर।
1: डैमेज कम हो जाता है,
0: जी
1: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है,
0: बिल्कुल।
1: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में।
0: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि
1: हाँ,
0: इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
1: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई,
0: जी
1: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है, कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के, मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
0: बिल्कुल। तो इसलिए समझदारी से चीजों का
1: समझदारी से
0: इस्तेमाल
1: करना
0: करना जरूरी
1: जरूरी
0: है। यहां पर एक गाने की बारी है।
1: है।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत
1: यस
0: है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। तो डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी फ्लेकी
0: जो
1: टाइप का
0: जो नीचे
1: डैंड्रफ होता
0: गिरता
1: है,
0: रहता है।
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत
0: अरे
1: है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो
0: जी
1: अलग है, मुंह से का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है।
0: जी
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहाँ मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कल सोरेसिस होता है। ये स्कल सोरेसिस अलग बीमारी है,
0: जी
1: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है वैसे एक स्कल सोरेसिस एक प्रकार है।
0: उसके बारे में भी बता
1: हाँ,
0: दीजिए।
1: तो ये स्कल सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कल सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कल सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कल सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, पर रिकरेंस इज वेरी कॉमन, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं रो, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं,
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए।
0: जी। कई शैंपूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डेंड्रफ के दुश्मन हैं, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए कि शैंपू डेंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है, मतलब
0: अच्छा, ऐसा भी
1: आपको
0: होता है।
1: लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मलेशिया फरफर करके एक फंगस होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो, पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना, आपको नहीं पता चलेगा। दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है,
0: जी
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना
1: हाँ,
0: है। जी, ये एक थंब रूल हो
1: थंब
0: गया।
1: रूल मतलब लोग
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: तो आपको देखना है कि आपको स्कल्प सोरेसिस है कि नहीं है।

0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
1: बहुत बड़ा मुद्दा है।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है ना।

डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका

0: क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इशू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं,
0: ओहो
1: तो ये गलत बात हो जाती है। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे,
0: सीधी सी बात
1: सीधी
0: है।
1: सी बात है। लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है। अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो, अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है, और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, तो आपके हाथ में बहुत सेफ है, तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है।
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है ट्रांसप्लांट, और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं,
0: जी
1: वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थेशिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है,
0: जी
1: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैम्पलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिक देते छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको, रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने का टाइम रहता है 6 से 9 महीना,
0: जी
1: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कॉम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब
0: मतलब
1: आपके
0: वो एक
1: ओरिजिनल,
0: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ओरिजिनल
0: जैसे
1: बालों
0: एक
1: के,
0: पौधे को यहां से हटा के वहां लगा
1: यस, वहां
0: दिया।
1: लगा दिया।
0: जी, और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
1: ये
0: क्या
1: थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
0: ये फेल्योर भी हो सकती है?
1: फेल्योर रेट बहुत कम है,
0: जी
1: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है।
0: जी यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई। बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो।
0: जी
1: बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या। उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखी है, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुए कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरेटा होगा। फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन 10 दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है, और ये 6 हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है। तो इनके टॉवेल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग,
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता
1: इतना
0: है।
1: सब करना पड़ता है।
0: जी
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके 5-6 साल हो जाते हैं। ये 5-6 साल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
0: जी जी
1: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों के ये जो एलोपेशिया एरियाटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
0: ओके।

0: तो एक उम्मीद बंधी है।
1: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
0: हमारी पूरी बातचीत में ये बात
1: yes.
0: बार बार आती है कि समय पर सावधान yes, होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो? आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करें 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करें तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोडा,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूं, आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
0: जी जी,
1: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
0: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से

देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जगन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथी

0: हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, कनकनगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, धमनी, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये दुप्पी, चौरा, मरकाडांड, लोधीडांड, आबादी, बिशुनपुर, सिलाजू, पेंडारी, कोटराही, पोखरा, गुरमुटी, चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, बगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, चकेरी, बासेन, परोगिया, घाटबर्रा, घासीडी, सरगा, बोड़ाझरिया, सिहारजोर, शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूर चुंदी, कुंजारा, पाकरटोली, श्रीटोली, उपका पानी, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, शाही डांड, कजरा, नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कूड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसी पानी, जाम पानी, साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी, देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी, गुड़ागढ़, अचानकपुर, तेंदुचुआ, पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत का पहला गीत आप तक पहुंचा फिल्म सांझ की बेला से। मुकेश की आवाज़ थी, प्रेम धवन का गीत और रवि का संगीत। अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म अनुरोध से। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अनुरोध फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़। अगला गीत जंगली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत का लिखा हुआ गीत और शंकर जयकिशन का संगीत है।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। मौसम फिल्म का गीत हम आप सबको सुनवाने वाले हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलजार का लिखा हुआ गीत और मदन मोहन का संगीत है।

0: मृग तृष्णा फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और गीत और संगीत शंभू सेन का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत हम यहीं संपन्न करते हैं।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली भारती।
7: लगता है आज मैं हवा में उड़ रहा हूँ, कुछ ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा है। ये क्या टकरा गया यार, अरे चिराग, ये क्या अलाउद्दीन का चिराग है, घिस कर देखता हूँ।
8: क्या हुक्म है मेरे आका,
7: क्या तुम सब कुछ कर सकते हो?
8: हाँ मेरे आका, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
7: तो तुम मुझे इस देश का राजा बना दो।
8: माफ कीजिएगा आका, अभी इसके लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है।
7: अरे तो मैं क्या आज के लिए बोल रहा हूँ, 15 दिनों बाद बना देना।
8: मगर मैं मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता आका।
7: क्या मतलब, किस मुर्दे को जिंदा करना पड़ेगा यार?
8: आपको मेरे आका, नशे के कारण आपने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है आका, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ आका।
9: नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या नशीली दवाओं का, ये आपका सर्वनाश करता है। नशे से बचिए, समाज को बचाइए।
0: इस अंतराल के बाद फिर हम लौट आए हैं और जहां हमने चित्रपट संगीत खत्म किया था वहां से फिर आगे बढ़ते हैं और एक गीत के साथ चित्रपट संगीत का सफर आगे जारी रखते हैं।

ये था शोले फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत और आरडी बर्मन का संगीत। इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35, आइए चलते हैं युवा जगत में।

नमस्कार साथियों, युवा जगत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गौरहा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? और हम ये कैसे हैं आप सब जो आपसे पूछते हैं वो हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछते, हमें आपकी वाकई में चिंता है भाई। इसीलिए तो हम हर बार अलग अलग विषय लाते हैं और आपके साथ चर्चा करते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल करके अपना हाल चाल ज़रूर बताते रहा कीजिए, साथ ही हमारा कार्यक्रम युवा जगत आपको कैसा लगता है, हम अपने इस युवा जगत कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके लिए भी सुझाव ज़रूर दीजिए। दोस्तों हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आपके सभी सुझावों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें। अगर अभी तक आपने हमारे ईमेल आईडी नोट नहीं किया है तो निकालिए पेन और कॉपी और नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है yj.air.bilaspur@gmail.com। हमें आपके ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों हमारे कार्यक्रम का नाम है युवा जगत और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे हर कार्यक्रम में हम युवाओं को केंद्र में रखकर किसी ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, जिनसे युवाओं को कुछ सीखने को मिले, उनका ज्ञान बढ़े। तो अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज, हमारे परिवार और सबसे बढ़कर हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं युवाओं में नशे के लत की। दोस्तों युवा अवस्था जीवन का वह दौर है जब हमारे पास सपने होते हैं, कुछ कर गुजरने का जोश होता है और अपनी पहचान बनाने का जुनून होता है।

लेकिन इसी उम्र में कई बार गलत संगत, तनाव, दिखावे या दोस्तों के दबाव में आकर कुछ युवा नशे की शुरुआत कर देते हैं। नशे की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी बात से होती है, बस एक बार ट्राई कर लें। लेकिन यही एक बार कब आदत बन जाती है पता भी नहीं चलता। दोस्तों, नशे से बचने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है नशे की शुरुआत ही ना करना। अगर कोई दोस्त या साथी आपको नशा करने के लिए कहता है तो बेझिझक कहिए, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, किसी गलत चीज़ को मना कर देना कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपने जीवन के प्रति और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। हमारे जीवन पर हमारी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे दोस्तों का साथ चुनिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो दोस्त आपको पढ़ाई, खेल, कला, संगीत, रोजगार या किसी अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करे, वही सच्चा दोस्त है। और अगर कोई आपको नशे की ओर ले जा रहा है, तो उससे दूरी बनाना बिल्कुल सही फैसला है। आज हम युवाओं के सामने पढ़ाई, नौकरी, करियर और भविष्य को लेकर कई तरह के दबाव हैं। कभी-कभी असफलता या तनाव के कारण युवा नशे को सहारा समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, नशा तनाव का समाधान नहीं है। जब मन परेशान हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। माता-पिता, भाई-बहन, टीचर या किसी ऐसे दोस्त से जिस पर आपको भरोसा हो। खेल-कूद में भाग लें, संगीत सुनें, किताब पढ़ें, योग या ध्यान करें और अपने मन की बात किसी से शेयर करें। याद रखिए, समस्या को छिपाने से वह समस्या और बड़ी होती जाती है और बात करने से उसका समाधान निकलता है। हर युवा के जीवन में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी को खिलाड़ी बनना है, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कलाकार या अधिकारी बनना है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो कोई अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है। अपने सपने को याद रखिए और खुद से पूछिए, क्या नशा मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा? जवाब निश्चित रूप से होगा नहीं। नशा समय, पैसा, स्वास्थ्य और साथ ही रिश्ते सबको धीरे धीरे प्रभावित करता है और बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए अपने भविष्य को नशे के हाथों में मत सौंपिए। और एक जरूरी बात, अगर कोई युवा पहले से ही नशे की आदत में फंस चुका है, तो उसे ताना या अपमान देने के बजाय सहयोग और सही मदद की ज़रूरत है। उससे बात कीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर या नशा मुक्ति एवं परामर्श सेवाओं की सहायता लीजिए। तो दोस्तों, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, नशा हमें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हमारी ताकत हमसे छीनता है। हमारी असली पहचान हमारे सपनों से है, हमारी मेहनत से है, हमारी प्रतिभा से है और हमारे अच्छे कर्मों से है। आइए हम आज खुद से एक छोटा सा संकल्प लें, मैं नशे से दूर रहूंगी और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगी और अपने सपनों को नशे से ज़्यादा महत्व दूंगी। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारिए। चलिए दोस्तों, हमारी बातें तो आगे भी जारी रहेंगी, अभी बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म टू स्टेट्स से। आवाज है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की। संगीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपको इंतजार होगा हमारे युवाओं के

लिए जो हम विशेष कार्यक्रम लाते हैं करियर गाइडेंस का क्रम। करियर गाइडेंस में सिविल इंजीनियरिंग में करियर की संभावनाएं इस विषय पर लीजिए सुनिए दिलहरन टंडन, उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिलासपुर से हमारे साथी मनीष सलाम की बातचीत।

0: साथियों, जब हम किसी नए रास्ते पे चलते हैं तो उससे पहले हम उस रास्ते को जानना बहुत जरूरी होता है कि उस रास्ते पे किस तरह के पड़ाव आएंगे, किस तरह का मकाम आएंगे और उस रास्ते पे चलने के लिए हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और यह काम होता है एक मार्गदर्शक का, एक पथ प्रदर्शक का। तो हाँ साथियों, आज के हमारे क्रम करियर गाइडेंस में भी आपके लिए इसी मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बनने का काम कर रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में करियर की क्या संभावना है। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं हमारे एक खास अतिथि। आइए जानते हैं उनसे उनका परिचय। नमस्कार सर, आज आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलहरण सिंह टंडन है। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उप अभियंता के पद पर पदस्थ हूँ बिलासपुर में।
0: और आज हम आपसे उस विषय में बातचीत करना चाह रहे हैं जो कि आज के बहुत सारे बच्चों का एक खास सब्जेक्ट होता है, सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम लगता है कि हम ढेर सारी आपसे बातें करेंगे और जानेंगे कि आज के कार्यक्रम में हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, वह किस तरह इस सब्जेक्ट को लेकर आगे किस तरह अपना करियर बना सकते हैं।
1: ठीक, ओके।
0: तो सर, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है और एक सिविल इंजीनियर की वास्तविक भूमिका क्या होती है।
1: मनीष, मैं बताना चाहूंगा, सिविल इंजीनियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों के दिल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लोगों की आवश्यकता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। सिविल इंजीनियर में ऐसा है कि लोगों की आवश्यकता, जैसे घर निर्माण है, पुल निर्माण है, रोड निर्माण है और बहुत सारे निर्माण का जितना कार्य है वो आवश्यकता पड़ता है। और हमारा बेसिक आवश्यकता इंजीनियरिंग के फील्ड में सिविल इंजीनियर की है।
0: 12वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग में जाने के लिए विद्यार्थियों के पास कौन कौन सी शैक्षणिक विकल्प होते हैं, ये भी आप हमें बताएं।
1: मनीष भाई, 12वीं बाद ये बोल सकता हूँ मैं कि आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद एग्जाम देंगे जो गवर्नमेंट क्या बोलना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन करती है, और उसके लिए आप सीजी में ही रहना है तो सीजी पीजीटी दिलाना पड़ता है। और आपको जैसे बड़ा बड़ा संस्था में जाना है तो उसके लिए आपको जैसे एनआईटी वगैरह करना है तो उसके लिए JEE एग्जाम होता है
0: जी।
1: वो एग्जाम दिलाने से फिर वहाँ से रैंक आता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, रैंक वाइज सिलेक्शन होता है।
0: तो इन सब एंट्रेंस एग्जामों को देखकर हम अपने पसंद के कॉलेजेस को चुन सकते हैं।
1: यस, एंट्रेंस एग्जाम देकर आप पसंद का कॉलेज, आपका रैंक जैसा है उसके हिसाब को आपको क्या बोलना चाहिए कॉलेज मिलेगी।
0: सर, सिविल इंजीनियरिंग चुनने वाले विद्यार्थी में कौन सी योग्यता, रुचि और या फिर ऐसे क्वालिटीज होने चाहिए जो कि उन्हें सिविल इंजीनियर बनने में हेल्प करेगी।
1: देखो क्या है, ये हर इंसान में एक अलग अलग क्वालिटी रहती है और एक रुचि रहता है। जिस बच्चे में रुचि यदि घर बनाने की है और क्या बोलना चाहिए हाईवे बनाने का है, बिल्डिंग बनाने का है, तो उसको मतलब बचपन से क्या बोलना चाहिए एक अंदर से जुनून आ जाता है कि मेरे को ये काम करना है। तो मतलब स्टूडेंट इस टाइप का रुचि है, बिल्डिंग का किस टाइप से तैयार करे, किस डिजाइन में बनाए, वो बच्चे ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा
0: जी। तो आज के समय में सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से प्रमुख स्पेशलाइजेशन है वो भी आप हमें बताएं।
1: मनीष भाई, मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो क्या बोलना चाहिए जो एग्जाम फाइट करके जाएंगे, आप बी करके जाएंगे तो बी करके जाएंगे तो आप बी 4 साल पढ़ाई करेंगे, 4 साल उसमें सभी सब्जेक्ट कॉमन रहता है
0: जी।
1: जितना सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है कॉमन रहता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है वो पीजी होता है
0: जी।
1: पीजी में जैसे आपका स्ट्रक्चर डिजाइन है, क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टिंग है, रेलवे है
0: जी।
1: ये कुछ कुछ है अलग अलग सब्जेक्ट है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
0: तो क्या आज सिविल इंजीनियरिंग के लिए केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त है या फिर उन्हें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और डिजिटल सीखना भी जरूरी है।
1: मनीष भाई, ये बोलना चाहूंगा मैं, जैसे आप बिल्डिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, बिल्डिंग फील्ड में तो आजकल ऐसा है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं, जैसे ऑटोकैड है, ऑटोकैड से आप 2D 3D अलग अलग ड्राइंग बना सकते हैं, उससे अपग्रेडेड वर्जन है, स्टैक प्रो है,

0: रिविट है और क्या बोलना चाहिए, आप डिजाइन जैसा करना चाहते हैं तो डिजाइन करना चाहेंगे, बीम वाला जो सब क्या बोलना चाहिए सॉफ्टवेयर वर्जन आया है वो ज्यादा मस्ट है, अभी बच्चे लोग को सीखने के लिए ज्यादा अच्छी चीजें हैं वो। अच्छा। उससे उसमें आपको क्या बोलना चाहिए रिवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हैं लोग, आपको मार्केट में अच्छा वैल्यू मिल सकता है उससे।
1: अच्छा, तो हमारे सारे साथी जो टेक सेवी हैं अगर उन सॉफ्टवेयर को सीखेंगे तो उनके स्किल्स और भी अपग्रेड होंगे और उन्हें मार्केट में ज्यादा जल्दी जॉब्स भी मिलेंगे।
0: हाँ, ये तो सही है कि आप जैसे अब समय है, समय की डिमांड है, उसके हिसाब अब खुद ही अपग्रेड होंगे, अपने आप को स्किल डेवलप करेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपको क्या बोलना चाहिए पकड़ बने रहेगी, काम भी अच्छे से कर पाएंगे। क्या बोलना, एक बहुत अंदर घुस कर, जैसे आपको बिल्डिंग के बारे में बीम क्या देना है और स्लैब का क्या साइज देना है, कितना थिकनेस रखना है, किस टाइप से आपका एलिवेशन बनाना है, ये सब चीजें अपग्रेडेड वर्जन अभी जो आए हैं उसमें ज्यादा इजी वे से बन जाता है, आपको लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं उसे करते हुए।
1: बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और अब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई के दौरान हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंटर्नशिप, साइट विजिट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना चाहिए।
0: मनीष भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा, क्या बोलते जैसे बीई आप किए तो आप 2 साल तो नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, थर्ड ईयर जाएंगे उसके बाद अपने टेक्निकल में जाते हैं, तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट जब थर्ड ईयर से जाएंगे तो आप पढ़ते पढ़ते जिसके बच्चे के में रुचि है, यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो वो हम तो ये पूरा क्या बोलना चाहिए आपका एक कंस्ट्रक्शन एरिया से घिरा रहता है, घिरा रहता है, आपको रुचि कहीं भी जाके दे सकते हैं, यहाँ बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ ब्रिज बन रहा है और बहुत सारे निर्माण कार्य चलते रहते हैं, रोड के काम चलते रहते हैं, आप देख के समझ सकते हैं, वहां जाके साइट इंचार्ज इंजीनियर से पूछ सकते हैं, मिस्त्री से पूछ सकते हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको। तो आपको क्या है कि जब मन में बना रहेगा, ललक रहेगा तो आप जाके सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल आप पढ़ाई करते रहेंगे और प्रैक्टिकल देखते रहेंगे तो आपको दिमाग में वो व्यू बना रहेगा, अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, इसी को बोलते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत तय सिल पर पड़ निशान, यानी कि जितने हम अभ्यास करेंगे उतने ही हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे आगे होने वाले जो पढ़ाई के दौरान जो भी हमारे क्या बोलते हैं स्किल्स होंगे वो भी डेवलप होते रहेंगे। सर, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद युवाओं के सामने सरकारी नौकरी के कौन कौन से प्रमुख अवसर होते हैं?
0: मनीष भाई, ये बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है, समय समय पे निकलते रहता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, बट कुछ जैसे कि हमारा रेलवे जो डिपार्टमेंट है वहाँ बीच बीच में मतलब 1-2 साल में आते रहता है, जेई के पोस्ट और एई के पोस्ट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट आते रहता है, उसको आप कंटिन्यू तैयारी करते रहे तो उसमें बहुत अच्छे चांस है। बाकी आपका स्टेट गवर्नमेंट का बोलेंगे तो आते रहता है, जैसे पिछले 2-3 साल पहले इरिगेशन का आया था जिसको WRD बोलते हैं, PWD का आया था, वैसे बीच बीच में आते रहता है, तो इस टाइप की स्कोप है सरकारी जॉब में, लेकिन यह है कि टाइम उसमें बॉन्डेड नहीं रहता है, टाइम लगता है, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, आएगा ही किसी न किसी क्या बोलना चाहिए रेलवे में चाहे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आता ही है।
1: तो सर, प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए कंस्ट्रक्शन या फिर और जैसे अन्य क्षेत्र हैं उसमें किस तरह के अवसर होते हैं, ये भी थोड़ा सा आप हमें साथियों को बताएं।
0: मनीष भाई, मैं ये बताना चाहूंगा, प्राइवेट सेक्टर ऐसा है, आपका जितना स्किल है, जितना आप अच्छे स्किल रखेंगे तो उसका आपका डिमांड वैसी होगा, आपका रेवेन्यू वैसी जनरेट होगा, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए अपने आप को अच्छे से मजबूती से रहना पड़ेगा, आपको नॉलेज वैसी बढ़ाकर रखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, आपका डिमांड इसी में होगा।
1: अच्छा,
0: आपको जितना अच्छा पकड़ रहेगा तो मार्केट में डिमांड अच्छा होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में आप खुद ही या तो भी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए एस्टीमेट तैयार करना और DPR तैयार करना, प्लान एलिवेशन, भवन का प्लान अच्छे से बना सकते हैं, एलिवेशन बना सकते हैं, नए नए डिजाइन तैयार कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में खुद ही इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, आपको अच्छा पकड़ नॉलेज रहेगा। तो
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर, तो आप हमें यह बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वे अगले 2-3 वर्षों में अपने करियर को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करना चाहिए?
0: मनीष भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा, जिस बच्चे में जो रुचि है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे WRD है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेलवे है और हाईवे है, तो क्या बोलना चाहिए सॉइल मैकेनिक्स है और फ्लूड मैकेनिक्स है,

0: बच्चे को जिसमें रुचि है, मान लो जैसे कि जिसको बिल्डिंग में रुचि है, तो बिल्डिंग का डिटेल आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हैं उसके बारे में, और जो आपको जिस मिट्टी से संबंध रुचि है तो मिट्टी के बारे में आप सॉइल मैकेनिक से पढ़ सकते हैं। बस बच्चे में लगाव किस फील्ड में है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं जी।
1: तो सर आपसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, हमने इस विषय के बारे में बहुत कुछ जाना और किस तरह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड पे जाकर और अपने करियर कैसे और अपनी मजबूत बना सकते हैं, उसका नींव कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज को पा सके। तो सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कार्यक्रम के अंत में हम आ चुके हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं हमारे युवा साथियों के लिए आपका संदेश।
0: मनीष भाई, मैं आज के बच्चे स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि आपका ललक है और इंटरेस्ट है तो आप अपने किसी भी फील्ड में जाकर सिविल इंजीनियरिंग का या किसी भी फील्ड में जाकर अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं। बस अपने पढ़ाई मजबूत रखिए, मेहनत मजबूत रखिए, तो उससे आपको अच्छा अर्निंग हो जाएगा, एक अच्छा देश बनाने के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं।
1: तो सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगले क्रम में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मनीष भाई।
2: दोस्तों आज के क्रम करियर गाइडेंस में अभी आप सुन रहे थे सिविल इंजीनियरिंग में करियर की संभावनाएं विषय पर दिलहरण टंडन उपअभियंता से हमारे साथी मनीष सराम की बातचीत। दोस्तों हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले हमारे पास कुछ संदेश हैं जो हमें आपको सुनाने हैं, लीजिए सुनिए ये संदेश।
3: नमस्कार, छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान की दिशा में सुनिए बिलासपुर पुलिस की आवाज। आज किसी भी संदेशों के आदान प्रदान अथवा धन, किसी प्रकार के दस्तावेज, अपनी सुरीली आवाज या अपने सार गर्भित विचारों के आदान प्रदान में मोबाइल फोन, इंटरनेट, इंस्टाग्राम आदि एक बड़े सेतु का काम कर रहे हैं। आज युवाओं में देश विदेश में नए मित्र बनाने का चलन बहुत अधिक है, इसमें भी यही उपकरण सेतु का काम करते हैं और इसका साइबर ठग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उनके द्वारा भेजे गए फ्रेंड रिक्वेस्ट के षड्यंत्र से अनजान हमारे युवा उनसे जुड़कर विश्वास कर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, गोपनीय एवं निजी जानकारी, पैसे आदि उन्हें भेज देते हैं और इसका लाभ उठाते हुए आपका नया कथित मित्र अर्थात साइबर ठग आपका बहुत कुछ लूट कर ले जाता है। ध्यान रहे, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं इतनी जल्दी उस पर भरपूर विश्वास घातक हो सकता है, ऐसा कभी न करें। आवश्यकता पड़ने पर डायल 1930 पर संपर्क करें। जनहित में सदैव बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़।

0: भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: इस संदेश के बाद दोस्तों लीजिए सुनिए हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत। आवाज है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

दोस्तों अब घड़ी ने इशारा कर दिया है, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं युवा जगत के अगले क्रम में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए श्रुति गौरा को इजाजत।

युवा जगत हमने सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 और समय हुआ है कार्यक्रमों की जानकारी देने का।

आज 7:30 पर ग्राम सभा में बेरा के गोट का विषय होगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और कृषि स्टार्टअप। भेंटवार्ता के क्रम में हम सुनेंगे रेशम कीट पालन से लाभ। इस विषय पर कार्यालय सहायक रेशम संचालक रेशम जांजगीर के श्री अनिल कुमार कश्यप से ली गई बातचीत हम सुनेंगे। साथ ही बातचीत में शामिल होंगी कटघरी अकलतरा के श्रीमती सोहद्रा भाई कंवर, इनसे बातचीत करेंगे पंचू भाई। रिकॉर्डिंग और संपादन पंचू भाई का होगा और प्रस्तुति व संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। सुगम संगीत में आज हम सुनेंगे रात 8 बजे रजनीगंधा का समय होगा रात 8 बजे 8:15 पर। ईमेल करें गीत सुने, आज आप सुनेंगे 6:20 से और शेष भाग होगा 7।

आइए अब कल के कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। हमारा प्रसारण आरंभ होता है 5:53 पर और कल प्रातः 5:05 पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खेती की बात में कल प्रातः 6:30 पर जानकारी का विषय होगा। कृषि आधारित विषय पर कल का खेती की बात कार्यक्रम हम सुनेंगे 6:30 पर।

रामचरितमानस गान हम सुनेंगे कल प्रातः 6:35 पर। कल प्रातः 6:45 पर प्रसारित करेंगे चिंतन। कल सुबह 10 बजे आकाशवाणी रायपुर से हम प्रायोजित कार्यक्रम उजाली की ओर सुनेंगे।

0: प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय होगा दिन में 11 बजे। नए तराने हमारे केंद्र से कल सुबह 10:30 बजे सुनिएगा। छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी रायपुर से करेंगे 8:30 पर। कार्यक्रम आज सुबह पेश किया जाएगा 7:05 पर और सदाबहार नगमों का समय होगा 7:30 बजे। कल शाम 5 बजे हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। कार्यक्रम अमृत धारा सुनेगा कल शाम 5:05 पर। ईमेल करें गीत सुने कल शाम 6:20 पर और शेष भाग 7 बजे। किसानवाणी हम अनुप्रसारित करेंगे कल शाम 7:30 पर आकाशवाणी रायपुर से। कार्यक्रमों की जानकारी अभी हमने आपको दी। 6:10 हुए हैं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, मुख्यमंत्री है आज नवा रायपुर में खनिज ब्लॉक्स के नीलामी के 8वां किस्त के रोड शो ला कर संबोधन, एमा छत्तीसगढ़ के 5 खनिज ब्लॉक्स घलो शामिल। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामला सरलग बढ़ा थे, प्रदेश में अब तक 130 मरीज मन में स्वाइन फ्लू के पुष्टि हो है। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान बलरामपुर और सूरजपुर के संगे संग एखर ले लगे जिला में अति भारी वर्षा होए के दिए चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले, मुख्यमंत्री यकीन है कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं है, भलुक अन्वेषण ले लेके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइक्लिंग तक पूरा मिनरल वैल्यू चेन विकसित करे जाही। एखर ले निवेश, उद्योग और रोजगार के मौका बाढ़ी। मुख्यमंत्री आज नवा रायपुर में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स के नीलामी के 8वां किस्त के रोड शो ला संबोधित करत रहीन। ओमन कहिन कि लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकेल और वैनेडियम जैसन खनिज रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी जैसन क्षेत्र पर बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री है बताइन कि नीलामी के एक किस्त में देश के 20 ठीन खनिज ब्लॉक्स शामिल है, जिमा छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉक्स घलो हवे। ओमन निवेशक मन ले अपन भागीदारी देके विनती करिन। ए मौका में मुख्यमंत्री है ई रेत संगवारी पोर्टल और टिन पोर्टल के शुभारंभ करिन। ई रेत संगवारी पोर्टल ले प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मन ला रियायती दर में रेत मिलही और टिन पोर्टल ले दंतेवाड़ा के आदिवासी परिवार मन ला उखर उपज के सही भाव मिलही। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ह इंडियन ओवरसीज बैंक और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संग कौशल विकास और वित्तीय मदद पर दू ठिन बड़का समझौता घलो करिन। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और खान मंत्रालय के बड़का अधिकारी मन के संगे संग उद्योग जगत के प्रतिनिधि मन घलो शामिल होइन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हकीन है कि कपड़ा और परिधान क्षेत्र न सिर्फ भारत के सांस्कृतिक विरासत के बड़का हिस्सा हरय, भलुक यह लाखों लोगन मल्ला रोजगार और आजीविका देवत है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह ला संबोधित करत उमन छात्र मल्ला देश के सांस्कृतिक विरासत और मूल्य ले जुड़े रही के वैश्विक नजरिया अपनाए के विनती करिन। बचर 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा मल्ले योगदान दे के आह्वान करत राष्ट्रपति है कहिन कि छात्र मल्ला नौकरी तलाशे वाला नहीं बनना चाहिए, भलुक रोजगार देवैया बन के प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू H1N1 के मामला सरलग बढ़ा थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ा के मुताबिक प्रदेश में अब तक 130 मरीज मन में स्वाइन फ्लू के पुष्टि हो है, जिमले 31 दिन सक्रिय मरीज हवे और 99 मरीज मन इलाज के बाद ठीक हो गए है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू ले एको मरीज के मौत नहीं हो है। राजधानी रायपुर में 3 दिन नवा मरीज मिले के संगे संग जिला में संक्रमित मरीज मन के आंकड़ा बाढ़ के 60 हो गए है। 11 दिन सक्रिय मरीज हवे। एखर अलावा दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा और महासमुंद के संगे संग आने जिला मन में घलो सक्रिय मरीज मन हवे। यही बीच

0: स्वास्थ्य विभाग ह लोगन मन ले खुदे दवा नहीं ले और लक्षण दिखे म जांच कराए के अपील करे हे। राज्यपाल रमेन डेका ले आज लोक भवन म छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंहा सौजन्य मिलिन। ये दौरान उमर राज्यपाल आयोग के कामकाज के बारे में जानबा दिन। उन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रीता सांडिल्य घलो राज्यपाल ने मिलिन। ये मौका में उमर राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल 2025 ले 31 मार्च 2026 तक के बेरा के 25वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपिन। समान नागरिक संहिता UCC लेके रायपुर के गुरु घासीदास ऑडिटोरियम में काली 1 सितंबर के मुस्लिम समाज के बैठक होई, जिमा बुद्धिजीवी मल्ले UCC ले जुड़े सुझाव ले जाही। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज बतैन कि मिले सुझाव ला राज्य स्तरीय UCC समिति के सदस्य मन के आगू पेश करे जाही। छत्तीसगढ़ के जम्मो 33 जिला मन के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE में पास उम्मीदवार मन बर सेना भर्ती रैली राखे जाही। ये रैली मध्य प्रदेश के सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में होही। सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पद पर उम्मीदवार मन ला 12 अक्टूबर और अग्निवीर महिला सेना पुलिस पद पर 14 अक्टूबर के रिपोर्ट करना होही। योग्य उम्मीदवार मन ला प्रवेश पत्र ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट और उखर ईमेल में भेजे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बाचे समाचार को थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ह बेमेतरा में जिला स्तरीय आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुई। ये मौका में उमन शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति के अनावरण करीन। कार्यक्रम के दौरान श्री साव ह गोंडवाना भवन के जीर्णोद्धार पर 10 लाख रुपया और बेमेतरा में आने आने विकास काम पर 6 करोड़ रुपया देके घोषणा करीन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में BSc कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पर स्पॉट काउंसिलिंग आज ले शुरू हो गए है। ये काउंसलिंग 2 सितंबर तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में बिहान 9 बजे ले संझा 5:30 बजे तक चलही। चुने के अभ्यर्थी मल्ला दस्तावेज परीक्षण महाविद्यालय आवंटन और ऑनलाइन फीस जमा करे के काम ला पूरा करे बर पड़ी। विश्वविद्यालय है एखर ले जुड़े दिशा निर्देश अपन वेबसाइट में जारी कर दे है। रायपुर जिला के अटारी गांव में स्थित नंदनवन ल एक गांव फिर बने ढंग ले बनाया जाही। आज मंत्रालय में हो एक ठिन उच्च स्तरीय बैठक में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी मन मुख्य सचिव के आगू नंदनवन पुनर्विकास के प्रस्तावित परियोजना ल पेश करें। नंदनवन के विकास भर करीबन 50 करोड़ रूपया के निवेश अनुमानित है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में रायगढ़ रोड स्थित कुशल नगर के तीर आज ट्रक ले पिकअप गाड़ी टकरा गए। ये घटना में 2 झन लोगन के मौकच में प्राण छूट गए और 12 झन ले ज्यादा यात्री मन घायल हो गए है। घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। गाड़ी में 25 ले ज्यादा लोगन मन बैठे रहीन। प्रदेश के लोक संस्कृति पारंपरिक संगीत और आधुनिक सुर के अनूठा संगम ला मंच देवाय के उद्देश्य ले काली 1 सितंबर ले रायपुर में रंग तरंग कार्यक्रम शुरू करे जाही। संस्कृति विभाग डहार ले होइया ये कार्यक्रम रोजे संझा 7 बजे ले महंत घासीदास संग्रहालय परिसर सिविल लाइन्स में होही। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र के प्रस्तुति के संगे संग अभी के संगीत मन के प्रस्तुति दे जाही। ये कार्यक्रम 3 सितंबर तक चलही। अब प्रेस है मौसम के हाल। मौसम विभाग वैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के उत्तर छत्तीसगढ़ पर रेड अलर्ट जारी करे है। इस दौरान बलरामपुर और सूरजपुर के संगे संग एखर ले लगे जिला में अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि पश्चिम बंगाल और उखर ले लगे उत्तर ओडिशा में एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र बने हैं, जेखर असर ले प्रदेश में मानसून के गतिविधि बने हैं। उमन बताइन कि रायपुर के संगे संग मध्य छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जिला पर येलो अलर्ट जारी करेगी है। यही बीच पाछू 3 दिन ले सरलग होवत बरसा ले प्रदेश के नदिया नरवा में बाढ़ आ गए है। आज घलो राजधानी रायपुर के संगे संग प्रदेश के कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के समाचार मिले है। अब थोरकुन समाचार सार मा। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ठाकुर ल प्रतिनियुक्ति में विधि

0: विधायिकार्य विभाग में प्रमुख सचिव के पद में पदस्थ करेगे हे। ए बारे में सामान्य प्रशासन विभाग डहार ले आदेश जारी कर देगे हे। और राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर के राखे जाही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज लोक अदालत के तैयारी लले के वर्चुअल बैठक लीन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। मुख्यमंत्री आज नवा रायपुर में खनिज ब्लॉक्स के नीलामी के 8वां किस्त के रोड सोला करीन संबोधित एमा छत्तीसगढ़ के 5 खनिज ब्लॉक्स घलो हवे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामला सरलग बढ़ा थे। प्रदेश में अब तक 130 मरीज मन में स्वाइन फ्लू के पुष्टि हो है। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान बलरामपुर और सूरजपुर के संगे संग इखर ले लगे जिला में अति भारी वर्षा हो के देहे चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हमने आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 आइए अब चलते हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में।

ऊंचे लोग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ सलमा आगा के साथ, और अनजान का लिखा हुआ गीत है आर डी बर्मन का संगीत है।